0: समय की है जब दिल्ली से गोवा की उड़ान एक सज्जन जा रहे थे, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 के पार ही होगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे।
1: राजेंद्र जी, ये एक विशेष बात हो जाता है ना
0: जी,
1: कि भारत का जब आप जहाज यानी कि प्लेन से सफर करें तो ज्यादा तादाद में 1.5 घंटा में पहुंचा देते हैं ना।
0: हाँ, 1.5-2 घंटा।
1: पर उसमें ये भारत के एक ऐसा पॉलिसी है कि चाहे जोन भी एजेंसी रहे,
0: हाँ,
1: वो 1.5 घंटा में आपको गर्म खाना भी खिला देते।
0: हाँ, खिला देते।
1: यहाँ पर तो चाय भी नहीं पूछते जो
0: डोमेस्टिक
1: किया था, जो यहाँ से यूरोप के देश में
0: अलग अलग रकम रहा हर जगह का काम धाम। तो राजमा चावल जब वो खा रहे थे तो कोल्ड ड्रिंक में भी उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार उन्हें देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी, तो शिष्टाचार बस मैंने कहा, लाइए मैं खोल देता हूँ। सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा। ये सज्जन ने कहा, बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी, जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिशों के बाद अंततः उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक नियम बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी रोज़ की ज़रूरतों के केवल पत्नी ही मदद कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा, ये काम इससे करवा लूं, वो काम उससे, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पांव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। क्यों ना एक सुंदर सा नगमे की ओर बढ़े।
1: जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा की ओर हम लोग को जरूर बढ़ना है। और ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी सुनने वालों को कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। सुनने वालों, आप सुनते रहना, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश का बस यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ सके। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: आ जाओ मेरे राम, बहुत ही जो सुंदर नगमा था, बहुत अच्छा ही लगा सब लोगों को। आप क्या कहते हैं शांता जी इस नगमे के बारे में?
1: ये गीत और भजन जो चलता है ना, आप इस पर जब गौर करें तो इसमें बहुत सारे संदेश आए। हाँ, सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनना बल्कि शब्द जो उसमें प्रयोग किया है, वो जग शब्द गाना के रूप में जो उसमें गाए हैं, अगर उसको आप सुनेंगे तो उसमें आप बहुत सारे लाभ निकाल सकते हैं।
2: राजेंद्र जी, आज का विषय जो हमारे है और उस ओर छलांग लगाना है हम सबको, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने सभी सुनने वालों को कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम छलांग लगाते हैं अपना विषय के ओर, विषय के ओर जो आज का है उस ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कनक भवन जो अयोध्या शहर में ना राजेंद्र जी।
0: हाँ, कनक भवन से पहले अभी हम जो छलांग लगा चुके हैं
2: वो तो अभी पार करना है,
0: अभी पार करना है।
2: वो जूस का बोतल खुला कि नहीं खुला?
0: खुल गया जूस का बोतल।
2: मामा का बोतल नहीं खुला?
0: हाँ, मामा भी अपना जूस का बोतल खुद ही खोल लेता है,
2: आजकल खोल लेते हैं।
0: हाँ,
2: तो मामा का बोतल खुल गया दोस्तों, और अभी संदेश जो थोड़ा से बाकी है हम सब उस ओर बढ़ते हैं, फिर छलांग लगाते हैं विषय के ओर आज के।
0: सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए, एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा, फिर मन हमेशा यही कहेगा हम गोवा जा ही रहे हैं, दो दिन वहीं रहेंगे, हम महीने में एक दो बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया, अब सब कुछ बेटों को देकर अपने लिए महीने के लिए पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है, होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है, बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें ही खुल गई, मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही पलों में मैंने पूरे जीवन की फिल्म देख ली, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं ही करें, जैसे कि हमारे मामा जी करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, अपना गाड़ी लेके जाते हैं, दूसरों को भी घुमाते हैं, और इस प्रकार उनका जो ज़िंदगी है अभी पूरा 25 बरस और बचा हुआ है।
2: ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा भाग्य लिखते है। दोस्तों, हम अब छलांग लगाने वाले हैं जो आज का विषय, राजेंद्र जी विषय जो अयोध्या का कनक भवन, छलांग लगाते हैं फिर एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है।
0: समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम बढ़ते हैं श्री अयोध्या जी में कनक भवन की ओर। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धरता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर हैं जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। क्योंकि सबके सब फक्कड़ संत थे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था, और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं।
2: रविंद्र जी, अभी तो आपने कहा वो बनिया ना,
0: पलटू बनिया,
2: पलटू,
0: हाँ,
2: तो बनिया किसको कहते हैं?
0: बनिया इसको कहते हैं जो बिजनेस करे,
2: बिजनेस,
0: हाँ,
2: जो गुप्ता होते हैं आदि,
0: हाँ, वो सब बनिया रहा।
2: बनिया,
0: ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, चार जाति रहा
2: ऐसा।
0: हाँ, तो बनिया का काम है बिजनेस करे,
2: बिजनेस करना।
0: अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए? कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज के कहलवाया कि भैया, आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊँगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात चला पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीतांबर ओढ़ाया जाता था, तथा शयन आरती के बाद श्री रामचंद्र जी, राम प्रसाद जी, नित्य करीब एक घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे।
2: राजेंद्र जी, भजन सुनाने से पहले पीतांबर ओढ़ाया जाता था, तो पीतांबर माने तो?
0: पीतांबर मतलब एक पीला वस्त्र,
2: पीला वस्त्र।
0: हाँ, तो राम प्रसाद जी एक घंटा भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। क्यों ना एक सुंदर सा कनक भवन के दरवाजे पर पड़े रहो का भजन चलाया जाए,
2: चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: और हमारे मामा जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको भी प्रतीक्षा है।

0: कनक भवन का जो सुंदर सा भजन रहा, बहुत ही अच्छा, मनमोहक रहा। कनक भवन दरवाजे पे पड़े रहो, यानी कनक भवन में भगवान राम और सब राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी और हनुमान जी रहते थे, इसलिए कहते उसके भवन में पड़े रहो तो भगवान के चरणों में आप सदा रहोगे, ये संदेश रहता है। तो क्यों ना हम आगे का संदेश अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी, राम प्रसाद जी की बात चल रही थी, वो सोने चले गए और धीरे धीरे रात बीतने लगी।
1: राजेंद्र जी, ये बात हुआ कि वो कनक भवन जो एक मंदिर है ना,
0: हाँ,
1: एक एक एक तीर्थ स्थान,
0: हाँ वहाँ पे है ना,
1: तो
0: अयोध्या में,
1: ये कहने के तात्पर्य ये संदेश ये देते हैं कि उस दिन कुछ चढ़ावा हुआ नहीं और उन्होंने बनिया के पास अपने व्यक्ति को भेजे ताकि हाँ, कुछ उधार में लेता है।
0: हाँ, एक दिन चढ़ावा ना चढ़ा तो उसने सोचा कि आज नहीं आया तो कुछ उधार लिया जाए, लेकिन जो बनिया रहा वो उधार ना दिए, तो सब लोग साधु संत लोग दिन में भी भूखे सो गए, रात को भी भूखे सो गए,
1: पानी पी के सो गए।
2: ये चमत्कार भगवान ने किया,
0: ये चमत्कार सब भगवान ने किया। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, क्या भूत प्रेत आ गया वो बनिया घर का
0: है? जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाजा खोला, सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि चार लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है, ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था, 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई, हाय आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूं तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे, इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिया करेंगे, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए, वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहे सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए।
1: लो, पलटू बनिया का मन भी लो गए। तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम।
0: पलटू बनिया का मन भी लेके चले गए बच्चे।
1: पलटू बनिया का मन भी गया।

0: बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गाना सुना है वो दो पल की दास्तां, तो और तुम चले हम कहाँ। तो जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ, और इस बनिया को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे, अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुई। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए, और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ, और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे या तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया, ऐसे ही हमारा भी कर दे जय। इस प्रकार से पलटू दास जी की जो कहानी रहा, और हमारे जो भूतपूर्व डायरेक्टर रहे गांधी सेंटर के, वो कुछ अभी कहना चाहते हैं।
1: राजेंद्र जी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर जी जो
0: निर्मला जी, जो हमारे भारत से प्रोफेसर जी हैं, हमारे डॉक्टर निर्मला शर्मा जी, वो गांधी सेंटर के डायरेक्टर एम्बेसी ऑफ इंडिया में पहले 3 साल अपना कार्यक्रम पूरा करके यहाँ से भारत गए हैं, और अब वो अपना एक संदेश हमें देना चाहते हैं भारत से ही दूरभाष की ओर से।
1: तो निर्मला जी, आपको स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो में, और जरूर आशा ये रखता हूँ कि कुछ छोटा सा संदेश आप हम सबको सुनाए।
2: संदेश तो नहीं, सब प्यारे बहनों और भाइयों जो सुन रहे हैं, और मेरे प्यारे भाइयों जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। इतना खूबसूरत ये फहोर रेडियो का प्रोग्राम है। इतनी भारत से इतनी दूर तक ये फैला हुआ है, और पुराने पुराने हिंदी के, भारत के इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं आपको हमेशा। मैं बहुत खुश हूँ फहोर रेडियो से कि ऐसा लगता है जैसे भारत हम दूर नहीं आए थे, जब भारत में ही है, जब रेडियो स्टेशन में बैठते हैं इतने सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं आप लोग, और पेश करते हैं और अपनी इच्छा पेश करते हैं कि ये सुनना चाहेंगे। इससे छाती एकदम गर्व खुशी से फूल जाती है। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि पहो रेडियो में पुराने पुराने भारतीय गीत, फिल्मों के गीत जीवित हैं। फहो रेडियो की तरफ से मैं फहो रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और सब जो फरमाइश भेजते हैं उन सबको आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एंजॉय कीजिए और हिंदी गाने सुनते रहिए, जो क्लासिक है, गोल्ड है इंडिया की, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द ओल्ड सॉन्ग, क्लासिक सॉन्ग्स, इसको सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को भारत से ही अपना पूरा संदेश भेजा। यहाँ पे जो हमारे 188 देशों में कार्यक्रम सुनाई देता है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का, रेडियो के और इंटरनेट के माध्यम से सब लोग आपको पूर्ण रूप से अच्छे से याद भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको अभी भी गांधी सेंटर में आते हैं मिलने के लिए। कुछ लोगों को पता नहीं कि आप चली गई हैं भारत में, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी नीदरलैंड आएंगे और सब लोगों से फिर दोबारा से मिलेंगे। इसी के साथ आपका फाहून हिंदुस्तानी रेडियो में बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हमारी जो डायरेक्टर रही गांधी सेंटर में पहले, उनका अभी भारत से एक संदेश सब लोगों ने सुना, और उसी संदेश का जो हम उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में जो बताया कि नीदरलैंड में भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं दूसरे देश में, क्योंकि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो इतने अच्छे से कार्यक्रम और अपना जो कल्चर का कार्यक्रम करता है उससे किसी को भी महसूस नहीं होता जो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे।
1: तो हम राजेंद्र जी वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
0: हाँ, गीत की ओर बढ़ते हैं
1: जिसका नाम लागी छूटे ना।
0: लागी छूटे ना अब तो,
1: और लागी छूटे ना अब तो सनम।
0: तो जैसे ही हमारा ये गाना बजता है लागी छूटे ना अब तो सनम, तो हमें पता चल जाता है सब लोगों को कि हमारा 2 घंटा पूर्ण हो चुका है।
1: और आज की कार्यक्रम जैसे कि सुनने वालों आप सभी ने सुने कि अयोध्या का कनक भवन, और राजेंद्र जी ये बात भी हो जाता है अयोध्या में कोई एक व्यक्ति है जो कितने सालों कितने अवस्था को हुए थे ना।
0: हाँ, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर है और उस मंदिर अभी तो बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। तो पुराने जमाने से बहुत, जब त्रेता युग से वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, लेकिन अब बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। उसके लिए सब लोगों ने पूरा दुनिया से सहयोग भी दिया और अभी बहुत सारे लोग अयोध्या देखने के लिए जाते हैं। जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो और भी ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। और हमारे जो हॉलैंड के, सूरीनाम के, गयाना के, मॉरीशस के लोग हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा रुचि रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हमारे सब भारतीय ही हैं और अपना कल्चर साथ लेके आए हैं, और भारत को तो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा उनका घर ही है। तो ज़रूर सब लोग उस तरफ चलेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हुए, बबली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: नहीं, लागी छूटे ना वो चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि
0: जी समय पे हमें सब काम करना चाहिए। समय समय की बात, समय बड़ा बलवान, अर्जुन लूटा भीलों ने वही धनुष वही बाण, तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: बोले,
1: दीवाना है तेरा। एक बार फिर कहूंगी कि कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाउन रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से धन्यवाद साथ देने और सुनने के लिए। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

लागी छूटे ना अब तो सनम, छूटे तो ना लेकिन अब समय का हमारा जो समय हो जाता है वो तो छूट ही जाएगा, तो हमें समय पे अपना काम पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाहुन हिंदुस्तानी के, जो कि इस प्रकार से हमें बड़े प्रेम से सुनते हैं अपना समय निकाल कर, और उनको कुछ ना कुछ जो संदेश हम लोग देते हैं उनके अपने जीवन में लाने से हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, और उसको चाहे कंटिन्यू ऐसे ही हमको सुनते रहिए। तब तक के लिए अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता केमाई, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे, और भारत देश से प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी जो अपने ओर से भारत से सहयोग दिए कार्यक्रम में। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

0: Listen up, yo.
1: It's Valentine's Day.

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। हिट सुपर सॉन्ग फॉर 99.9 रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

और पालू तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंता का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर नीखंतक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी करे देखता रहू, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेगंतक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और धड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मोफी का नाम है कोबरा गिल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर

और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नीक अंत का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं और कुछ गन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है, तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या। नैतिकी लता जी और मोहम्मद रफी जी परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है, हमारे मुकेश जी है।

और हमसे तो हमारे लेस्टरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश।

और माही कल हो ना हो हमारे प्यारे जनता की कहते हैं दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने के आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने के, तुम कोशिश जरूर करना, मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

टूट जाता है कभी कभी वादा, जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बड़ी गुमान प्रति वोमन कहो ना कल हो न हो, शरुक का ये विलम है। और उसके बाद हम और आगे को अपना अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए, मेरे यारो न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तो मेरे जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और जरूरत हो तो मेरी, जरूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो ये और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, द सिंगर इज मैथी मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नाइटिंगेल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

और मैं सोनिया और परमाशीन मोहम्मद रफी का और नतिल गेल लता जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं कि तेरी और मेरी रातों में बस इतना फर्क है, तेरी रातों को नाक बजता है और मेरी रातें रो कर

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो रिश्ते

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिरं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज सुबह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है, लाचार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सभी जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है और आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। जिसका घर पे आज कार्य है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके कार्य शुभ शुभ और मंगलमय हो। जो अपने काम के तैयारी में हैं, अभी निकलने वाले हैं, तो ये मत भूलना गांधी जी का संदेश कि मेरा जो देश हमारे लिए क्या कर सकता है, इस पे चिंता मत करना। चिंता ये करना कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जो अभी स्कूल के लिए यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, तो उनको ये कहूँगा कि सरस्वती माता को भूलना मत। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान का देने वाले हैं, जो हमारे देश में सफर से आए हैं, तो यही कहूंगा कि आपको हार्दिक से स्वागत है हमारे सुंदर सा देश में। और जो सफर पे जाने वाले हैं यानी कि कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फैन फकांसी तू एंसर किया जाता है। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है यानी कि एक नया परिवार आया है, उनको बहुत बहुत सा बधाई देना चाहता हूं।

मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। और खास करके पहला भाग में शंकर महादेवा जी की आवाज में आप सुनेंगे सुंदर सुंदर भजनों। एक दंताए वक्र तुंडाए, ये गीत से हम शुरू करते हैं।

शंकर महादेवा जी के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत सुना। सुनवाना एक ऐसा कलाकार जो 7000 से ज़्यादा गीतों को गा चुके हैं, अलग अलग भाषाएं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शायद इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा था पर जाकर के कलाकार बने और इतना सुंदर सुंदर गीतों को गाए। कहते हैं

कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आई जाते हैं। आज अपना एक दिन बनाइए जहां आप शायद संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें जो कभी ना कभी आप सुने होंगे शायद आज काम में आई जाए।

सुनो लो, हम शंकर महादेवा जी का जो शिव तांडव स्तोत्रम है उनके आवाज में सुनेंगे।

शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण रची, शिव तांडव स्तोत्रम जो जाकर के शंकर महादेवा जी की आवाज में हम सब सुने सुनने वाले। कहते हैं कि अजीब से रिश्ता है मेरा ऊपर वाले से, कहते हैं कि अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठा देता है।

सुनने वालों, आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत है। और कहते हैं कि मेरे साथ वो खड़ा है मेरा साथ वो खड़ा है जो जगत में सबसे बड़ा है।

कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मा रहे। जरूर इन बातों पे ध्यान देना सुनने वालों कि जीवन बहुत छोटा है, गुस्सा, पछतावा और शिकायत कहते हैं कि चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहे। सुनने वालों हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे और शंकर महादेवा जी कृष्ण महामंत्र के और संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं।

जी रहे हैं सरकार तेरे मेहरबानियां में, जी रहे सरकार तेरे मेहरबानियां में, पल रहे परिवार कान्हा तेरे पहरेदारी में।

चाहते हैं कि यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी।

किसी ने अच्छा कहा है। दिए हुए जुबान और काम आया इंसान, ये दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे जुबान दिए हुए हो तो ये बात को ध्यान देना चाहिए, और जो तुम्हारे काम आए हैं ऐसा इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो चीज है कभी नहीं भूलना चाहिए।

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय हनुमान। शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब हनुमान चालीसा का सुने सुने वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह चुनते समय अपने माता पिता के राय अवश्य ले, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है। तो सुनने वालों जरूर इस बात पे ध्यान दे कि जिंदगी के राह चुनते समय अपने माता पिता की राय अवश्य ले, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है।

संदेश जरूर आपके लिए रखना चाहूँगा कि उम्मीद हमारी वो शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए माता पिता के साथ बिताए हुए पल, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। तो जरूर इस बात पे ध्यान देते हुए आज समय निकालिए अपने माता या पिता के अंतर्गत। एक संत ने अच्छा ही कहा है कि चाहे आप सुबह पूजा मत करो पर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल वो पूजा के समान हो जाता है।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है। जो इंटरनेट द्वारा अपने घर पे सुनते हैं, बहुत बहुत सा और अभिनंदन। जो अपने मोबाइल से सुनते हैं, उन्हें भी इंटरनेट द्वारा हार्दिक से अभिनंदन। और जो इस समय अपने गाड़ी से सफर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सा और शुभ दिवस। कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगे। कहते हैं अपने माता पिता, जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग कहलाते हैं,

पिता के लिए उनके बच्चे भी सब दिन कितना प्यारे होते हैं, ये तो हम मेरा राजा मेरा लाल ये सुंदर सा गीत से पता चलेगा।

किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते।

सुनोलो, आज के लिए हम अपने माता पिता पे और जरूर ध्यान देते हुए माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है।

तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है माँ। ये सुंदर सा गीत हम सुने और सुनने वालों आज ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है, मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी हुए वह पुण्य है।

पास से जब शिशु जन्म लेता है तो माता पिता कितना खुश होता है, उस अंतर्गत में हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

सूरज कहो या चंदा, ये सुंदर सा गीत एक फूल दो माली से निकाला गया फिल्म जो मन्ना दे के आवाज में और हम सब सुने। तो आपको इस बात को भी पता चल गया होगा कि जब हमारा जन्म होते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, समस्त परिवार कितना खुश होते हैं, और प्रकृति क्या करते हैं। जैसे पंछियों अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और समय आने पे हम अपना अपना घर बसा लेते हैं ना। तो हम शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव और हमारे रूप, ये तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है, कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव, हमारे रूप, यही वो तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है।

औलाद वालो फूलो फलो, कहते हैं कि ना सुख खरीदने पता हो ना दुख बेचने पता हो, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ।

इन गीतों को सुन करके आज समय जरूर निकालना, अपने माता पिता के लिए, कि वो नहीं होते तो हम कैसे होते।

ये सुंदर सा गीत जो हम सुने कि पप्पा जल्दी आ जाना, और ज्यादा ख्वाहिशें नहीं बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो काफी है।

बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। यही संदेश होते हैं हमारे माता पिता के।

कभी किसी को दगा नहीं देता है, और पाप किसी का सगा नहीं होता है।

0: हाय।
1: जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें बहुत स्नेह कर रखिए। यहाँ तक जो मैं आपके साथ जुड़े रहे, आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। और हमारे कार्यक्रम जो आगे हमारे कोलेखा साथी लेकर बढ़ाएंगे।

0: भोर भये पन घट पर लता जी के लाइव अपत्रेद यहाँ से आपके लिए पेश किया गया। मेरी आवाज के सुनने वालों, आपको यहाँ से रफी जी की आवाज में।
1: इसके बाद मैं फिर एक बार कृष्णा मुखर्जी से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। और अब पेशे खिदमत है एक दो गाना जिसकी फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गाने के बोल हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वगैरह वगैरह। लीजिए मुलायजा कीजिए।

0: कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, सदियों तक रहेगा। ये रफी जी के प्यार जो है, हाँ, कई पीढ़ियों तक ये जरूर से आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। आपके लिए पेश किया जाता है रफी लता के लाइव परफॉर्मेंस। कहते कि हमसे दूर जा पाओगे कैसे, हमसे दूर जा पाओगे कैसे मेरे दोस्तों, दिल से हमने, दिल से हमको भुला पाओगे कैसे। हम तो वो खुशबू है, हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं। खुद की सांसों को, खुद की सांसों को रोक पाओगे आप कैसे, ये तो बता।
1: मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पुराने कुछ स्टार्स थे उनके लिए गाने में मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मैं जानती थी इसके ऊपर जो एक्टिंग होगी वो बहुत सही होगी। उसमें से एक जया जी हैं।

ये कॉन्सर्ट दिया गया है 1997 में। अजीब दास्ता है ये लता जी के आवाज में। द बेस्ट म्यूजिक ऑफ यू फेवरेट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। दुनिया उसी को सलाम करते हैं, दुनिया उसी को सलाम करते हैं जो अपने लक्ष्य पर, जो अपने लक्ष्य को प्रणाम करते हैं। और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे है सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर की हर रचना सर्व उत्तम है, एलक पर्सन इज यूनिक।

फिल्म का नाम लव इन शिमला। फिल्म का नाम लव इन शिमला 1960 के ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने मिलकर श्रवण किए कि दिल थाम चले हम। कहते हैं कि बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, मैं शब्द तू और तुम बिन मैं व्यर्थ। जिंदगी है तो जी ले, जिंदगी है तो जी लो, वरना गुजर जाएगी। जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी, ये जिंदगी है जीना सीखिए। ये जिंदगी है जो जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी। जिंदगी की कहानी बस इतनी सी है, जिंदगी की कहानी बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है, कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। जिंदगी है तो जी लो, जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी।

0: नए नंबर से और साथ में आएगा लता जी के मधुर आवाज में आपके लिए पेश किया गया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, कहाँ पर लेकर चलते हैं? हाँ, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनेंगे हम कि प्यार क्या है, लव क्या है। LOVE उसका मतलब क्या है, जरा हम सुने मिलकर।
1: L
2: O
1: V
2: E

जिसको LOV नहीं आता है वो कहते हैं कि वो बोरिंग है पर ऐसा नहीं है। प्यार, प्यार से तो आप है, प्यार से तो हम है, प्यार से ये सारा संसार है ना। और कहते हैं कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, आप सुनिए जरूर से, इसे थोड़ा गौर से सुनिए, कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता है वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनने की कोशिश करते हैं। जी मेरे दोस्तों, आपने ठीक सुना कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है।

लुट गए मेरे प्यार की नगरी, रफ़ी जी के लाइव परफॉर्मेंस आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,

Wat een uithaal, wat een uithaal. Oh my god. रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते ही. क्या आलाप है, क्या अंतरा, क्या मुखरा, कितने सुंदरता से निभाई है रफी साहब जी ने. Ja, lieve luisteraars, hier kunt u terecht voor al uw vermaais, reclameberichten en anders wat u wenst te horen. Neem gerust contact op. Je Aapka, har ek radio he. Radio van hon, jis per aap tune he. Tere intezaar me bas. Tere intezaar me kab se udaas baithe he. तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं. तू एक नज़र हमको देख ले, तू एक नज़र हमको देख ले. इसी आस में, इसी आस में कब से बेकरार बैठे हैं.

0: मगर भूख मेरी मिटा तो ना सकेंगे नजारे, मगर भूख मेरी मिटा तो ना सकेंगे नजारे।
1: इधर
0: आ गया,
1: बैठ जा,
0: बैठ गया,
1: उठ जा,
0: उठ गया।
1: अब कहो क्या खाओगी
0: कलेजी
1: ए बेबी।

खाओगे जलेबी आ तो मान गए, आखिरी में मान गए, जो दोगे वही खा लेंगे, क्या करेंगे। कभी कभी हम बेचारे लाचार हो जाते हैं। एक सवाल है आपसे, व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? एक सुंदर सा शायरी आपके लिए, और वो ऐसा है कि मेरे दिल की हर धड़कन, हाँ हाँ, कि मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए है, तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है, अब तो मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार के लिए ही है। इस गाने के बगैर मैं सोचती हूँ कि प्रोग्राम अधूरा रहेगा, तो अधूरा नहीं होना चाहिए, तो इस गीत से ज़रूर से पूरा हो जाएगा, और वो है रफ़ी जी के लाइफ इन सूरीनाम की आयाया सुक सुक आयाया सुक सुक। क्योंकि सूरीनाम में ये लाइव शो दी थी रफ़ी जी ने, तो इस गीत में थोड़ा से सूरीनाम के इंस्ट्रूमेंटल भी धर दिया गया है।

जी हाँ, हंसते हंसाते यहाँ से आपके लिए। जी मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी लाइव इन सुरीनाम परमारिबो इन मई 1963 में आप जो थे उन दिनों में तो आपने जरूर से देखे होंगे। और ये भी था द पारल थिएटर द पारल में परमारिबो सुरीनाम इन 1963। से आपके लिए यादें ताज़ा किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

हे मनुष्य, जो भी सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, उन सभी भक्तों में सदैव वास करता हूं मैं, और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता हूं।

अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, नई सुबह आई बधाई के साथ। आंखें खोल देखो, आंखें खोलो देखो, गणेश की शुभकामनाएं साथ लेकर आई है।

परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, बस चलते ही रहना। सुना दे हमको महेंद्र कपूर जी और मना दे और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में सुने कि जीवन चलने का नाम, चलते ही रहना, चलना ही जिंदगी है, रुकना के नाम, रुकने का नाम मौत। फिल्म शोर 1972 के ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया, चला दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों।

मन्ना देवी जी की आवाज में हमने यहाँ से श्रवण की है कि ओ नदिया चले चले रे धारा, फिल्म का नाम हम देखे तो फिल्म का नाम सफर है, सफर है फिल्म का नाम। बचपन का यार, बचपन का यार, बुढ़ापा का बुखार हमेशा दिल में रहता है। बचपन का यार, बुढ़ापे बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। दुश्मन का चांटा, दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभता है। नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है, नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है। माँ की डांट झापड़, बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखाते हैं। नाना नानी का दुलार, दादा दादी का प्यार हमेशा हमेशा याद आएंगे। उम्मीद उम्मीद जब जंग लगी, नाकामी संग लगी बर्बाद कर देते हैं। और जुए की आदत शराब की लत कहीं का नहीं छोड़ते। इसी के साथ हम आपसे कहते कि खुश रहो सलामत रहो, जी भर मुस्कुराओ। खुश रहो सलामत रहो, जी भर मुस्कुराओ। पत्थरों का नहीं बल्कि फूलों का घर बनाओ। प्रेम से सजाओ, प्यार से पेश आओ।

इतने सुंदर से फरमा दी है महेंद्र कपूर जी ने, कहती है कि ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। एक बुजुर्ग ने सच कहा है, अब वो बुजुर्ग ने क्या कहा है और क्या ऐसी सच्चाई है, तो यहाँ से हम मिलकर सुनते हैं आपी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। एक बुजुर्ग ने सच कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसे, और अगर बेटी के दुख से दिल तहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसा। अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है, ये बुजुर्ग ने कहा है, एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर ननद का घर में आना भाभी को, भाभी यानी कि भौजाई को चुभता है, तो भाभी का मायके जाना सही कैसे हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा सोचना होगा, ज़रूर से सोचो, ये मैं भी कहती हूँ।

ये सुंदर सा गीत की संसार है एक नदिया फिल्म रफ्तार से निकाला गया है और ये पिक्चराइज किया गया है 1975 में और इस वक्त में हमने सुने अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता जी की आवाज़ में। एक जोक आपसे बताना चाहती हूँ कि एक दोस्त ने पूछा अपना एक दूसरा दोस्त से, दोस्त ने पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। एक दोस्त ने दूसरा दोस्त से पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो दोस्त ने कहा बस कुछ ख़ास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पटनी की ताने, दर्द भरी गाने, बाकी भगवान जाने। यहाँ पे एक और सा एक छोटा सा जोक आपके लिए कि सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, जो अकेले रहते हैं वो दुखी, जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर ज़िंदगी में मज़ा आखिर ले कौन रहा है। ज़िंदगी का मज़ा आखिर कौन ले रहा है जब सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाला दुखी, शादीशुदा वाला दुखी, तो सवाल उठता है कि आखिर में इस ज़िंदगी का मज़ा कौन ले रहा है।

बेशक बीते हुए लम्हों की कसक हमेशा साथ रहेगी। सुना दी हमको महेंद्र कपूर जी, महेंद्र कपूर जी फिर जो गीत ने सुनाई और फिल्म का नाम है, हाँ आप तो जानते ही होंगे, आप तो जान ही गए होंगे फिल्म का नाम। अगर नहीं जाने हो तो बता देते, फिल्म का नाम निकाह। निकाह ने का दिन तो इन तख तक में ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। दोस्ती होती है वन टाइम, एक ही बार दोस्ती होते हैं वन टाइम, हमें निभाने पड़ते हैं उसे फुल टाइम। याद किया करो एनी टाइम, याद किया करो एनी टाइम, तुम खुश रहो ऑल ऑल ऑल टाइम। यही दुआ प्रार्थना है, यही दुआ प्रार्थना है लाइफ टाइम। यहां से आपके लिए एक छोटा मोटा वाला जोक बता देते हैं। आप मेरे साथ जरूर से कल्पना करें कि एक व्यक्ति खड़े खड़े सब्जी वाले यानी जो खुरंत बेचते हैं, सब्जी वाले की काफी देर से सब्जी वाला काफी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। सब्जी वाला एक व्यक्ति जो भाजी बेचते हैं, सब्जी वाला यानी उसे सब्जी कहते हैं, भाजी को सब्जी भी कहते हैं, कि सब्जी वाला काफ़ी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। अब पानी कब छिड़कता है, जब सब्जी जो ने पत्ता जो है वो भाजी जो है वो पत्ते जो कुमला ले रखते हैं तो उस पर पानी छिड़कते हैं ताकि वो थोड़ा सा हरा भरा दिखाए। तो एक सब्जी वाला काफ़ी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था और एक ग्राहक बोला, कस्टमर वो बोला, भैया भिंडी को जब होश आएगा तो 1 किलो दे दो।

यहाँ से हम एक बार फिर सुनेंगे फिल्म निकाह से। इस बार है महेंद्र कपूर जी, सलमा आगा, किशोर कुमार और आशा भोसले जी।

0: लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
1: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है।
0: हाँ ले जाओ, ले जाओ।
1: थैंक यू सर।

आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, हम एक पल की कुछ नहीं जानते। आशा भोसले जी की आवाज़ में फिल्म का नाम वक्त, जो निकटतम फैफस दस्तक में पिक्चराइज किया गया है। आपसे एक गहरी बात यहाँ से करनी चाहती हूँ और वो ये है कि किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लिया, किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लीजिएगा। बात ना भी हो तो एक मैसेज ज़रूर से कीजिएगा। अगर गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। प्यार आए तो उसे गले लगा लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ज़िंदगी कभी कभी दूसरा मौका

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हैं और यहाँ से जो हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में, तो शांता जी और कोलेखा साथी बबली जी भी और पनील के पीछे हमारे भाई राजेंद्र जी है, सभी अपना अपना एंट्री देते हैं। फिर उसके बाद में हम विषय जो आज का बड़े धमाकेदार है उसके ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप पहले शांता जी के सुन रहे हैं, फिर बबली जी को, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी को।
1: रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम में या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनापन का एहसास दे। सिलिका शांता के प्यार भरी राम राम प्रणाम इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: चुप रहना और अपने काम में लगे रहना भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया वो बिना किसी आवाज़ के बुलंदियों पर पहुंच गया। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: सबने अपना अपना शेर तो बड़ी जोर शोर से सुनाया, किसी ने चुप रहने की बात कही, किसी ने रूबरू मिलने की बात करी, शांता जी ने अपना सुनाया, लेकिन हम क्या सुनाएं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हम आगे सुनाएंगे सबके लिए नमस्कार। और इसी प्रकार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आज हमारा जो विषय है कश्मीर के ऊपर है। और
0: दोस्तों कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम हर सप्ताह की तरह, जैसे कि जिसका मन अभी उदास है, जो अभी अभी रेडियो को ऑन किए है और जो इस समय ये कार्यक्रम के सुनने के लिए, क्योंकि कितने लोग ये कार्यक्रम अन्य देशों में भी सुनते हैं, वहाँ शायद समय कुछ और होगा, तो सभी के लिए पहले हरिओम सरन जी ने सुंदर रूप से अपने वाणी से और जाकर के वो गीत से हम सबको और हम सब के लिए गाकर छोड़ गए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम वो ही गीत चलाते हैं पहले, फिर आज का विषय जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में काफी संदेश है, पर और भी संदेश है दोस्तों, आप सुनते रहना। हम पहले वही गीत की ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी हर सप्ताह की तरह, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।

0: तो दोस्तों, अभी हम सब आगे बढ़ने वाले हैं ये विषय के लेकर, पर ये विषय आज जो हमारे विशेषज्ञ है ना, तो विशेषज्ञों ने कुछ और भी संदेश रखे हुए। राजेंद्र जी, इसके बारे में आप कुछ पहले सुनाओ, तो फिर हम सब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जो आज का विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है वो एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
0: धरती का स्वर्ग।
1: हाँ, और जब धरती का स्वर्ग की बात आती है तो कश्मीर में क्या नहीं होता है, अखरोट होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे होते हैं, केसर जो वहाँ का बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया में नंबर वन का जो केसर कहते हैं वो कश्मीर में ही होता है।
0: महाराज इंद्र जी, ये बात है कि केसर आप कह रहे हो, पर केसर बोले तो हम लोग यहाँ कैसे हम जानते हैं शांता, हॉलैंड
1: सफरान, सफरान
0: सफरान
2: सफरान
0: हाँ। सफरान उसे कहते, दुनिया के वर्ल्ड सबसे ऊंचे क्वालिटी के वही,
1: सबसे ऊंची क्वालिटी का वही होता है। वहाँ के अखरोट, वहाँ का बादाम, वहाँ का नारंगी, मौसमी, सब चीज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट वहाँ होती है। उसी कश्मीर के बारे में जब हम आज आगे की बात करेंगे कि वहाँ के राजा जो आखिरी राजा हुए,
0: बहुत अच्छा होता,
1: क्योंकि राजा करण सिंह, जब राजा हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे तो राजा करण सिंह भी ऑलरेडी, उनका राजा करण सिंह की जय बोला जाता था उस समय। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और फिर सब राजे रजवाड़े सब एक उसमें आ गए, भारत में सब विलीन हो गए। इसी प्रकार का आज हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है कश्मीर के बारे में और राजा हरि सिंह के बारे में, उस पर प्रकाश डालेंगे।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम पहले थोड़ा से उस ओर बढ़े, क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके और गीतों को लेकर आए हैं, और हमारे सुनने वालों भी इस बात को जब कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं, शांता जो अपना पिटारा लेकर आते हैं, भला बताइए वो कैसा चीज़ है, वो क्या है। तो सुनने वालों, ये बात है कि ज़रूर एक ना एक दिन ये अवसर मिलेगा आपको शांता का पिटारा से और देखने के, और तथा यानी कि वो कहने की तात्पर्य ये है, जो अपना गीतों जो शांता जी लेकर हम सब के लिए खोज खोज करके इकट्ठा करके यहाँ उपस्थित होते हैं स्टूडियो में, तो क्यों ना पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर अभी आज ये तेमा जो है, विषय जो है जम्मू कश्मीर, उस पे जरूर चर्चा किया जाएगा। पर राजेंद्र जी, हमारे सुनने वालों तथा हमारे विशेषज्ञों खास करके संदेश कुछ और भी रखे हैं, तो वो भी सुनाना पड़ेगा। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जो गीत के बोल है वो है, कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा,
0: कश्मीर के वादी में मेरी माँ का
1: द्वारा
0: द्वारा, चलो सुना देते हैं।

0: कश्मीर की वादी में शेरों वाली माँ का द्वारा है। लखबीर सिंह लखा जी ने जो भजन गाया है बहुत ही सुप्रसिद्ध एकदम, उसमें बहुत ही प्रकार से लोगों को सराहनीय हो जाता है, सबको पसंद आता है, यानी सबको पसंद आता है इस प्रकार का जो लखबीर सिंह लखा ने भजन गाया। और कश्मीर का तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो धरती का स्वर्ग कश्मीर है उसके बारे में तो हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना बयां किया है। तो इसी विषय में हमारा कार्यक्रम कश्मीर के विषय में जो आज का रहने वाला है, होने वाला है, कश्मीर की जो 10 बातें हैं।
1: राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे कश्मीर के बारे में हम सब आज विशेष बातें रखने वाले हैं, पर पहले राजेंद्र जी कुछ बातें और आए हैं और उन्हें तो पहले हम सब रख दे, ताकि हमारे सुनने वालों इस बात को भूले ना और इस बात को जानना बहुत क्या कहते हैं जरूरी है। अब जैसे कि राजेंद्र जी यहाँ बताया जाता है कि फलों से सीख जो हम सबको मिलता है ना, फल से, तो फलों से जो सीख हम सबको मिलता है कि जैसे कि गुजाबा, शांता जी गुजाबा पता ना क्या?
2: गुजाबा मेरे को पता है क्या है, खुयाफा,
1: उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद ना,
0: तो उसको बोल अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, हिंदी में अमरूद,
1: ऐसा। तो फलों से सीख जो हम सबको मिलते हैं कि नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं ना उसे। अब कभी कभी तरबूजा बाजार से लावो, होलांत एक देश है जहां पर तरबूजा यानी कि वाटर मेलन ना कि हर समय मिलता है। सूरीनाम एक देश है जहां पर बस ख्रोतफाकांसी में ना मिलता है
2: गर्मी के अनुसार।
1: और पर होलांत एक देश है जहाँ पर हर समय आपको और तरबूजा कोई भी फ्रूट कोई भी अपेगो एप्पल जैसे भाई
2: लगातार मिलते हैं।
1: हाँ, लगातार हमारे घर पे पेड़ से जो सेब एप्पल होते हैं ना, तो अगोरते हैं कि अब फूल ले लिया है, धीरे धीरे फूल से अब जब फल बन गया है और उसका तुराई जुलाई अगस्त में होता है कि हम सब उसे तोड़ पाते हैं ना। पर होलांत एक देश है यहाँ हर समय सब प्रकार के और फ्रूट मिल जाता है। पर कहने के तात्पर्य ये है नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं फलों से, फलों का ना, कच्चा आम जैसे भैल और इस प्रकार के अनेकों और फलों में नमक लगा दो।
0: नहीं, जैसे नमक आम में न लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक अमरूद में और जामुन में काला नमक और अमरूद में काला नमक लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, और जैसे केले में भी थोड़ा सा नमक लगाने से उसको अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आम में नमक नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आम वैसे ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है
1: आम जो फलों का राजा। पर राजेंद्र जी ये भी बात है, आम जो अंदर से यानी कि रंग उनका और क्या कहते हैं औरायों को कैसे कहते हैं,
0: ऑरेंज
1: भगवा
2: भगवा,
1: हाँ जो रहे तो जान ले ये मीठा मीठा है। पर कभी कभी कोई कोई आम अपना मनमानी करते हैं तो हरा ही रह जाता है, तो उसे हम नमक लगा कर खा लेते हैं ना।
0: हाँ, तो जो हरा रहता है वो कच्चा रहता है।
1: हाँ, वो अपना मनमानी करते हैं,
0: फिर उसका अचार भी बना सके,
1: अचार भी बना सकते हैं। पर कहने के तात्पर्य ये है
2: लोटस बनाते
1: रहा, लोटस शांता जी बनाते थे लोटस, आपको पता क्या?
0: हाँ, जानिला।
1: तो उसमें क्या डालते थे शांता जी, कैसे बनाते थे उसे?
2: नीमक मर्चा कसरीपो,
1: नीमक मर्चा और कसरीपो के साथ, तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था और उन्हें बना करके घाम में भी रखा जाता,
2: घाम में धर देते फिर खाओ ना,
1: तो फिर खाओ ना। तो ये संदेश है कि फलों से सीखिए, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। और आज का संदेश जो हमारे है, हमारा संदेश जो है कि जैसे कि जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे घर से एक बेटा बेटी जन्म लेवे और वही हमारे बुढ़ापा का लाठी बनता ना। शांता जी, इसके बारे में आपके क्या ख्याल?
2: बुढ़ापा का लाठी बच्चे
1: जी,
2: बच्चे आज आप तो ऐसे बोले जेके बच्चे ना, और जेके बच्चे नहीं तो
1: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा,
2: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा?
1: वही तो यही बात है। बबली जी आप जरा बताइए कि उसके बारे में हम सबको क्या संदेश लेकर आए आज?
3: हाँ जी जरूर, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है और कैसे? बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बहू होती है। जैसे कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिंदगी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी।
1: बहू क्या बन जाते हैं? बूढ़े सास ससुर की लाठी,
3: बुढ़ापे की लाठी,
1: बुढ़ापे की लाठी।
3: जी हाँ, मेरा तो यही मानना है वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या बनाना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वे क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की, इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कदर करें। बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे या बेटी से पहले बहू को अपना मानिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान भी छोड़ो, बहू मेरा अभिमान बोलो। बेटी साल में 65 दिन सेवा करेगी, बहू 300 दिन आपके पास रहेगी।

0: तो दोस्तों सुनने वालों, ये संदेश हुआ बबली जी ने लेकर आए अपने और बुढ़ापे का सहारा। तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं? बुढ़ापा का सहारा।
1: हाँ, तो ये जैसे बबली ने बताई ना, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को समझना, समझाना और समझ के रहना।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज का विषय जो हमारे बड़े धमाकेदार है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, और जैसे कि अभी सुनने वालों से इस बात को सुना ही चुके हैं शांता जी कि जम्मू और कश्मीर में थोड़ा अंतर है ना, और अंतर क्या है, पर और भी काफ़ी संदेश है जो हम सब रखने वाले हैं। पहले हम एक और उसी, और क्या कहते हैं उसे राजेंद्र जी, शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।
2: हाँ,
0: तो सभी सुनने वालों को सुना देते हैं।
2: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है।
0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा। हमारे सभी सुनने

0: बात तो ये हुआ कि हमारे श्रीमती लक्ष्मण जी ने
1: जी
0: श्रीमती लक्ष्मण जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के लिए और जा करके ठंडी आने वाले है और सभी के लिए शाल और मिट्स का और तैयारी करके और ला करके फौन हिंदुस्तानी में रेडियो में पहुंचाए हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हर बार, और हम सब के लिए भी कुछ ड्रिंक आदि भी तैयारी करके मिठाई आदि लेकर के यहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पूरा टीम फौन की ओर से, और ऐसे हमारे कार्यक्रम सुनते रहना, जरूर हम लोग संदेश लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जरूर।

0: ऊंची पर्वतों पे मैया का बसेरा है, और जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ तो भर देवता विराजमान हैं, जैसे केदारनाथ में शिव जी हैं, बद्रीनाथ में विष्णु जी हैं, गंगोत्री में गंगा मैया है और यमुनोत्री में यमुना मैया है। इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा रहता है। लेकिन अब हमारा समय हो रहा है किसकी तरफ, न्यूज की तरफ समय जा रहा है। तो हम न्यूज सुनेंगे थोड़ी देर, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
1: एडवोकेट का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Steinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और क्या करना चाहिए न्यूज में, क्या कहां हो रहा है इस न्यूज में, सब चीजें रहता है दुनिया का खबर। लेकिन हम अपना खबर जो है सुबह के लिए वो भी कुछ चाहे ना, क्या हमें भी क्या करना चाहिए। तो जब सुबह उठते हैं तो उस समय शहद और नींबू, यानी शहद डालकर पीने के 10 लाभ हैं। गुनगुने पानी में शहद डाल के क्या क्या लाभ हैं नींबू के साथ मिला के, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। लोगों ने कुछ लोग जानते भी हैं, वो जो नहीं जानते वो जान भी लेंगे। सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के नियमित सेवन से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से हमारा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। निजात यानी छुट्टी मिल जाती है बीमारियों से। गुनगुने पानी में शहद के फायदे, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सुबह एक गिलास गुनगुना पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद को गर्म पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके नियमित सेवन से सेहत से जुड़े कई समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।
5: हाँ राजेंद्र जी, बात यह है कि ये जो आप हम लोग को ये संदेश सुना रहे हैं ना, और जिसे हम गुनगुना के बोले तो हल्का गरम होना चाहिए, और नींबू डाल के और इससे भी वजन कम होता है।
0: जो लोग मोटे लोग हैं, मामा जैसे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है।
5: तो मामा को ये तो रोज पीना चाहिए।
0: हाँ,
5: तो ऐसा है तो ये कार्यक्रम जरूर सुनते होंगे मामा जी, तो हाँ। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। हाँ। क्योंकि वजन इससे भी घटता है, और पर सिर्फ वजन नहीं है, शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। राजेंद्र जी,
8: नौ वातर में होने गाड़ के और नींबू लमचे,
5: पर इसमें तो संदेश कुछ और है मेरे ख्याल से राजेंद्र।
0: हाँ, अभी और है, काफी संदेश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के फायदों के बारे में। अच्छे पाचन के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए।
5: पर राजेंद्र जी ये तो बताओ, पाचन अब थोड़ा अब हम लोगों है कुवाटा, भिंडी डाम, लिफोर्नो और ऐसे सरमक्का,
0: पाचन यानी
5: तो सर नाम में थोड़ा ना
0: भोजन खाते हैं वो अगर पचे ना मोई से तो पेट में पड़ा रहे, तब जब पचता नहीं तो सड़ जाता है तो
5: पचानी का।
0: हाँ, पचानी का
5: ऐसा।
0: तो इसलिए शहद में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, या पेट को साफ करने में मदद करता है और लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र में मदद करता है और अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा शहद एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करता है। कब्ज दूर कैसे करें इस बारे में भी समझना होगा।
5: तो अब ये तो बात बता दो, कब्ज क्या चीज है?
0: कब्ज मतलब जैसे हम जो भोजन खाते हैं और वो वहीं जम जाता है, पेट से साफ नहीं होता, तो रुका हुआ पेट में भोजन को कब्ज कहते हैं।
5: ऐसा तो ये भी गुनगुना पानी और नींबू और शहद से इसका भी।
0: हाँ, ये मिश्रण जो है कब्ज के लिए तत्काल उपाय, मतलब तुरंत काम करता है, पेट साफ हो जाता है। या आंत का प्रोत्साहित कर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंत म्यूकस में बढ़ावा देता है, म्यूकस यानी उसका लुब्रिकेशन, पेट को हाइड्रेट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है। इन सब की एक साथ मौजूदगी से मल त्यागने में मदद करता है। लस्सी का प्रणाली की सफाई इसमें मददगार, लस्सी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे आपको सुस्त और रुका हुआ महसूस होना, कब्ज, सोने में परेशानी, उच्च या निम्न रक्तचाप, यानी रक्तचाप का मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन ये तो तेज हो रहा है या कम हो रहा है, तो रक्तचाप उच्च या निम्न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
5: रुद्रक जो कहते हैं ना।
0: हाँ।
8: और जब कब्ज होती है तो पेट में बहुत दर्द भी होता है,
0: बहुत दर्द, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह सुबह इस मिश्रण को पीने से लसीका प्रणाली को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है, जिससे न केवल सभी उपरोक्त लक्षणों बाकी प्रतीक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक स्वास्थ्य में सुधार। जो स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए, एसिडिटी प्रकृति का नींबू, शहद और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू को तुरंत दूर करने में मददगार होता है। नींबू अपनी लार ग्रंथियों को सक्रिय और आक्रामक बैक्टीरिया को मारकर मुंह शुद्ध करने में मदद करता है। सांस में बदबू का कारण जीभ पर सफेद परत का गठन मुख्य रूप से खाद्य और बैक्टीरिया से मिलकर भी है। यह रस इस परत को प्रभावी ढंग से हटाकर सांस की बदबू से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है और मूत्रवर्धक में रूप में कार्य शहद में बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल के रूप के गुण होते हैं।
5: ये सब सिर्फ वो
0: सिर्फ सुबह नींबू और शहद गर्म पानी गुनगुने पानी में डालने से ये सब चीजें ठीक होती हैं।
5: तो राजेंद्र जी, जरूर हमें तो इस बात को पता है कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक अपना अपने ओर से और मौका मिलता है हम लोग के संदेश सुनाने के लिए, और जो अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम को सुना जाते हैं, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा और गीत के ओर, क्योंकि ये बात है राजेंद्र जी, हमारा जब बुढ़ापा आते ना, तो कुछ बातें हमें हर बार ख्याल आता है कि अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी उड़ जाते हैं। तो जब उड़ जाते हैं तो आपको अपना सेहत के भी ध्यान देना चाहिए, आप कैसे और क्या कर सकते हैं, जरूर इसमें कुछ संदेश है जो हमारे पास रखा जाता है और उसे आपके लिए हम सब कोशिश करते हैं रखने के लिए। हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद ये संदेश पूरा नहीं हुआ ना राजेंद्र जी?
0: नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार और रहेगा।
5: तो एक बार और रहेगा ये संदेश जो जिसमें महत्वपूर्ण बात है, गरम क्या कहते हैं,
8: गुनगुने पानी
5: लव वाटर में मिलाकर नींबू और
8: शहद
5: शहद कहते हैं राजेंद्र जी,
0: होनिंग
5: को, तो वो उसमें कितना ताकत है, कितना वक्त द बलंगराय का एसेंसिस दरफान और वाचे दरमियाई काम बराई का। तो दोस्तों हम एक सुंदर से गीत के ओर, पहले बबली जी कुछ कहने वाले हैं,
8: क्योंकि उसमें नींबू अपना असर करेगा, शहद अपना असर करेगा और पानी अपना असर करेगा, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा।
5: ऐसा होता है तो राजेंद्र जी ऐसा क्यों ना वही पिटाड़ा में और जो कंप्यूटर में हम लगा चुके हैं शांता जी जो खोज करके लाए।
0: हाँ, जो गीत के बोल है, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, चला देते हैं।

0: ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। अगर माता जी नीचे उतर आई फिर लोग ऊपर कैसे जाएंगे?
1: इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाला ही, और हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ने ही सही और लगाया करता है। सबको खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ बुलाया करता है। तो दोस्तों, अभी आप जो संदेश सुन रहे राजेंद्र जी के ओर से कि सुबह में और जा करके जो गर्म पानी लव वाटर से और मिला करके नींबू और शहद जो होनिंग कहा जाता है कितनी कितनी और चीज़ों के लिए लाभदायक है, राजेंद्र जी हम सबको आगे और सुनाइए।
0: आगे का संदेश इस प्रकार है कि इसमें कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने की क्षमता भी होती है। नींबू और पानी के साथ या मिश्रित एक उत्कृष्ट आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है, या आपके मूत्र मार्ग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित महिलाओं के लिए यह रस का एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि यह संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। शहद और गर्म पानी से शरीर में एनर्जी में भी वृद्धि होती है। शरीर से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और कार्य प्रणाली में भी वृद्धि होती है। शहद शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सुबह में गर्म पानी नींबू के साथ लेने से आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। वजन घटाने में मददगार किस प्रकार होता है? शहद और नींबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है। शहद और नींबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की इच्छा और शुगर लेवल को कम करके पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह इसका सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के साथ करने से आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। त्वचा यानी
1: कि हमारे चमड़े।
0: हाँ, त्वचा के लिए नींबू के लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लेंजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा दृढ़ जीवाणुरोधी और कोलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसलिए अगर आप स्वाभाविक रूप से चमकदार त्वचा चाहते हैं तो यह पेय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पोषक तत्व और विटामिन से भरपूर शहद और नींबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी ऑक्साइड विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, साथ ही यह वजन कम करने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती, शहद का सेवन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसके सेवन की सलाह देते हैं। शहद के साथ नींबू और गुनगुने पानी के नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमण को भी दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है तीन चीज़ों का, पानी यानी गुनगुना पानी, शहद और नींबू, तो ये सब इतनी चीज़ों में मदद करता है। तो जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से अपना, तो तो संजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में?
1: जरूर राजेंद्र जी, पूछना तो ये है कि जरूर ये संदेश जो आपने दिए है ना, हमारे सभी सुनने वालों इससे जरूर कोई ना कोई और लाभ उठाए, ताकि हमें छोटा सा चीज है ना, कोई मंगा दवाई नहीं, कोई मंगा दवाई, राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑफ है, कोई मंगा दवाई नहीं है, और इससे कितना आसानी से और कितना चीज से हम सब अपने शरीर अपने में बदलाव ला सकते हैं ना,
2: फायदादार है हाँ।
3: क्योंकि सब चीजें घर पे मौजूद होती हैं, घर में मिल जाती हैं, बाहर से लाने की भी नहीं जरूरत।
1: तो अगर दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान देना, और राजेंद्र जी जो इस समय पैनल पे दूसरा गीत के रखने वाले हैं, पर आज का विषय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा भी जिनका, और राजेंद्र जी कितने साल के हुए राजा वहाँ का?
0: राजा जो महाराजा करण सिंह है, राजा हरि सिंह, उनके जो पिताजी राजा हरि सिंह, उम्र 96 ईयर हो चुका है,
1: 96 ईयर,
0: और अभी भी वो अच्छे से चलते फिरते हैं, बड़े सब काम करते हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि अभी भी सुचारू रूप से सब अच्छे ढंग से चलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी है, हरिद्वार में, पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिर
1: मंदिरों बनाए हैं
0: बहुत,
1: और जो जिनका, और हम अभी उसके बारे में जरूर सुनने वाले, पर बबली जी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ कहने वाले हैं।
3: हाँ जी जरूर, एक छोटा सा संदेश है, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते।
1: तो ये तो पूरा सत्य है, और हम सब उस पे जरूर इन बातों को, सुंदर सुंदर संदेशों को जरूर कार्यक्रम में रखते हैं। शांता जी कुछ आप कहने वाले थे, जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं आप?
2: जम्मू कश्मीर अगर बुलावा होगा तो जाऊंगी, पर जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर कहते भी ना,
1: कश्मीर
3: में,
2: कश्मीर के श्रीनगर, और क्षीर सागर कहाँ पे, वहाँ पे भी है?
0: क्षीर सागर भगवान विष्णु लोक में है, जहाँ पे दूध का सागर है, जैसे हमारे इस धरती इस भूमंडल में पानी का सागर है, वैसे ही विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक में वहाँ दूध का सागर है, इसलिए क्षीर मतलब दूध, उसका सागर है, दूध का सागर है, जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं।
1: और वहाँ पर शांता जी आपका कोई इरादा थोड़ो है उधर जाने का?
0: अभी तो नहीं होगा
2: अगर जाना हो तो जरूर जाऊंगी।
1: और दोस्तों हम अगले गीत की ओर जरूर बढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा विषय है उसके बारे में राजेंद्र जी हम सबको सुनाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में, पर पहले उस ओर बढ़ने से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, ये रेडियो जो हम सबको ये अवसर में देते हैं, डायरेक्टर और जो हम सबको ये अवसर देते हैं, और कार्यक्रम जो यहाँ से हम लोग का ग्रुप जो है जिसमें हम सब इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए, तो यही आशा रखते हुए हम सब हर बार, और हमारे विशेषज्ञों जो भारत देश से और यहाँ होलांद से भी जो हम सब के लिए तेईमास खोज खोज करके रखते हैं, भाई संजय शर्मा जी जो दिल्ली पहाड़गंज से, भाई रिंकू और कालिया जी जो उत्तम नगर द्वारका से, मोहन गार्डन से, होलांद देश में रत्ना जी जो दनहाख से हम सब के लिए कार्यक्रम रखते हैं और विषय खोज कर और रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी गीत की ओर हम बढ़ेंगे, गीत के बाद में आज का विषय उस ओर छलांग लगा देंगे।

0: चंचल जी ने भजन गाया है, बहुत ही अच्छा भजन वो गाते हैं, गाते थे, अब तो रहे नहीं, अभी पिछले साल चले गए बेचारे, लेकिन उनके भजन अमर हैं और सब लोग उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं आज भी। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि कश्मीर की जो 10 मेन बातें हैं पहले वो करेंगे, इसके बाद वहाँ के राजा की बात करेंगे। कश्मीर के बारे में 10 वाक्य। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के अलावा यह अपनी खूबसूरत वादियाँ, जंगलों, नदियों और फलों के पैदावार के लिए मशहूर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है, क्योंकि इसकी बहुत से विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से निबंध में बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारा कार्यक्रम अब बच गया है, इसमें क्या हम इस कश्मीर के बारे में बोलें, क्योंकि बहुत बड़का बात रहा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि छोटे से समय में ही बड़ी बात हो जाए तो क्या कम है।
1: बिल्कुल एकदम राजेंद्र जी, क्योंकि कश्मीर के और एक उसे कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग, ऐसा हाँ, कितने लोग भी कहते हैं।
0: परंतु आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में जो 10 प्रकार की लोग बात करते हैं। नंबर एक बात है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि संजय जी आप कह ही रहे हैं धरती का स्वर्ग है। यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और नंबर तीन बात जो है, कश्मीर का भूभाग सबसे बड़ा है। चौथी बात इसमें आती है कि कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहते हैं। इसके इतिहास बेहद प्राचीन हैं, कश्मीर का इतिहास सबसे पुराना है। मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर को परियों का देश से संबोधित किया था। और नंबर जो 7 बात है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गुलमर्ग को सुंदर और सुगंधित पुष्प इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे पुष्प बड़े सुंदर हैं और सुगंधित पुष्प है, खुशबूदार पुष्प है, फूल यानी पुष्प यानी फूल। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। डल झील देश और विदेश के नागरिकों को आकर्षित करती है। डल झील है जो, उसमें विदेशी नागरिक बहुत से आते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। कश्मीर भारत का सबसे और बेहतरीन राज्य है। यह उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग तो कहते हैं, लेकिन लोग इस स्वर्ग को देखने से देश विदेश सब जगह से आते हैं। ये सभी मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ी हो या कैसे भी मौसम हो, सब में अच्छा दिखता है। गर्मियों में कश्मीर में हरियाली देखने को मिलती है, गर्मियों में भी हरा रहता है, और सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। यहाँ पर जब जो सेब है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे देश में तो भारत में तो जाता ही, विदेशों में भी इसका सेब जाता है कश्मीर से। और मैंने देखा है कि कश्मीर में जो जंगल है, जंगल में भी सेब होते हैं।
2: लेकिन कश्मीर के शॉल भी बहुत मशहूर हैं, पश्मीना शॉल।
0: हाँ, उन जंगलों में पश्मीना शॉल के, पश्मीना जो बनता है, पश्मीना एक रिंग होती है जो उसके बीच से पूरा शॉल निकल जाए तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कश्मीर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और घूमने लायक जगह है।
1: राजेंद्र जी, मैंने नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझा, क्योंकि आपने दिखाया कि उंगली में जैसे कि कुछ क्या उसके बारे में कुछ।
0: हाँ, उंगली में जो दिखाया रिंग नहीं होती जो उंगली में,
1: हाँ हाँ जी,
0: अंगूठी,
1: हाँ जी,
0: उस रिंग से जो सॉल है,
1: यानी कि रस्सी निकाल सकता उतना पातर,
0: जो सॉल है
1: हाँ
0: कश्मीर का,
1: हाँ जी,
0: वो उस रिंग से निकल सकता है, यानी इतना पतला और इतना
1: पातल रस्सी।
0: हाँ,
2: क्योंकि कश्मीर के शॉल बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है।
1: ऐसा बात है।
0: पश्मीना जो कश्मीर का पश्मीना है,
1: पश्मीना
0: वो पश्मीना ही निकल सकता है,
2: शॉल का नाम है पश्मीना।
0: हाँ। और गुलमर्ग की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर की जान भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो एक जगह है उसकी खूबसूरती बहुत है। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह सर्दियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसको कुछ विशेषताएं और खूबसूरती का कारण बहुत प्रसिद्ध कर जाती है। कुछ कारण हैं इसे प्रसिद्ध जो बनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केसर, केसर यहाँ का बड़ा फेमस है, सिकारा, मौसम यहाँ का बड़ा अच्छा, सेब और सूखे मेवे, सूखे मेवे में जैसे बादाम है, अखरोट है, और
1: मेवा कहते हैं ड्राई फ्रूट ना,
0: ड्राई फ्रूट्स हाँ, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कश्मीर में होते हैं। और यहाँ का गुंडोला, गुलमर्ग में गुंडोला होता है, और इस प्रकार से कश्मीर और भी खूबसूरत इन चीज़ों से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कश्मीर में कौन सा फल प्रसिद्ध है, जो यहाँ का फल है वो दुनिया में कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ के सेब दुनिया भर के मशहूर हैं, यह अपनी सेब,
1: सेब कहते हैं वो एप्पल,
0: एप्पल।
1: पर राजेंद्र जी, हॉलैंड में तो रंग बिरंगी, कभी एल स्टार तो कभी गोल्ड स्टार की क्या क्या नाम है शांता, ढेर सारे ना।
0: जो तो वहाँ का जो वहाँ का है सेब, वो हर प्रकार का सेब वहाँ रहता है,
1: वो सब प्रकार,
0: सब प्रकार का। यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर हैं, यह अपने फल उत्पादन, सेब जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फल है। यह राज्य भारत में स्ट्रॉबेरी उत्पादन के रूप में भी उभर रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी यहाँ आगे हो रहा राज्य बहुत ज़्यादा। अत्यधिक मांग के और उत्पादन के कारण युवा अपनी लाभदायक आजीविका के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती में उद्यम कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की खेती में अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं। सेब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में काम चल रहा है।
1: स्ट्रॉबेरी बोले तो
0: स्ट्रॉबेरी,
1: ओके, ऐसा
0: वो लाल लाल जो,
1: हाँ जी,
0: यहाँ तो बहुत मिलती है,
1: यहाँ तो बहुत मिल जाता है।
0: तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर
2: डोगरी,
0: हाँ, अधिकतर कश्मीरी डोगरी बोलने बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे जो भाषाएं होंगी यहाँ पे हिंदी होगी, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोली जाएगी, और डोगरी तो है ही है, लेकिन कश्मीरी भाषा में पुरानी जो उर्दू बोलते हैं लोग वो भी थोड़ा सा रहेगी। अब प्रश्न है कि कश्मीर में लड़की को क्या कहते हैं?
1: लड़की को
0: सभी राज्यों ने अपनी भाषा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, और किसी वस्तु विशेष को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कश्मीरियों में एक लड़की को कूर कहा जाता है,
1: ऐसा
0: जी। इस प्रकार से कश्मीर का जो इतिहास है अलग अलग प्रकारों से है। कश्मीर की बात करें तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े, और फिर हम लोग कश्मीर की बातें आगे भी करते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी।
0: कश्मीर जम्मू में ही वैष्णो माता जी का मंदिर है, और वहाँ के जो भजन है बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसी को क्यों ना चला दिया जाए।

0: तो काफी नजदीक हो गया, लेकिन लागी छूटे ना अब तो सनम। ये एक हमारा जो गाना है वो बड़े ही फेमस है, वो जैसे ही इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं सबको पता चल जाता है कि ये लोगों का समय जो 2 घंटा है वो पूरा हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें इस बात से पता चल जाता है कि कार्यक्रम अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं।
0: तो चला देते हैं लागी,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिनको गोविंद की चाहत थी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। आपके साथ दी आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। साथ देने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सेविका शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। तो इसी प्रकार हम भी रेडियो से कभी छूटेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे जिया जाए या रहे, लेकिन रेडियो के साथ हम समय हर समय बने रहेंगे। हर बार की भांति अगली बार भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जो हमारे इतना प्रोग्राम साथ देते हैं सुनने के लिए और बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी और जाकर के समता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, अब मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा जरूर ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचा होंगे। हम ये बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बस यही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में हैं, चाहे जोन आई संदेश में हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो, जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपना आंध्र क्लियर छे, तब बोलियो ना ना ना हम सरनामी हैं, तो हमारे क्लियर छे से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों। ओंदर दैट यू कैन से आई बिन गेबोरन इन नीदरलैंड, यू कैन से या आई बिन फ्रॉम हियर, आई बिन फ्रॉम दैर, मार ओर्सप्रोंगलिक हील फॉर मेंस सेगा ये बिन फ्रॉम इंडिया, नी या नो मे फॉर ऑदर्स वेल, एंड दैर मग यू सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन मेंस, सो गात इट टोख, यू मग इट सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन टो सुरिनामी, जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों, आप एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये जोंग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार, या सुरिनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए है, और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मेंज़ en laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice of een Vires Uditram, Nisha Madaren, Auro Amadali, Surinder Sutal, Faris Barsati en Yadgar Orchestra gestaand. Je giet ko je sab gaie the met alles erop en eraan. Chutney masala laga ke raus na jij.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इज ऑन टॉपर, एन फॉर द टॉपर्स नेचुरली द हेल मोय यूनिवर्स फॉर ऑन सनामी हैव अ सॉन्ग। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुट ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान्स, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और बेंसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितने लोग है आपको फीलिंग है। तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

ये पुराना कलाकार है गुरुदत्त कल्ला जिंग का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो यो भी सरनाम के गीत अपने स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से दैट इज निमत अंदर दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनाना सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मा सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना

0: और त्रफसी बुरु का ये जोंग है हाउस हाउस होल कोई जमाना में बड़ी टॉप सॉन्ग थी दोस्तों। उसके बाद में हम चलते हैं ई वंग एस वोंग और उज्जर मछरी
1: अवेदिफिसी अवेदिफिसी अवेदिफिसी अवेदिफिसी।

पुंताओ और पुंता वानी किरमी। तो दोस्तों जवानी याद हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो और क्या है, क्या है अगला गीत, ईवान की ओर हम जाते हैं, आओ सुना जाए। यो भी पॉपी सॉन्ग।

फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी और चित्रा लोवे चित्रा कोई के साथ भाग्य है और ये कौन चित्रा है सब चित्रा ना भाग्य वाला है कोई भग जा है सर मक्का कोई भग जा है कंडाल कोई भग जा है वेलखदा हाँ बे से दे में भग जा है और कौन चित्रा है ये आप लोग जानो अपने प्यार के धोखा दे दे कभी कभी लोग भाग जाते हैं तो हम चलते हैं कपड़ा धोने के वॉशिंग मशीन में।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रीमनी इनके बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे ये। तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा दोस्तों। तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो, तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत अतिश वेलन हील आवली चे फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जिगिल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफिका, ये गाया हुआ सॉन्ग है और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं, प्यार भी हमारे

प्रोग्राम 6 बजे तक जारी रहेगा दोस्तों। उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके जो न्यूज ब्रेक है जॉनी का आप जरूर सुनते रहना। शुक्रवार है जून के 5 तारीख। आज शाम का मौसम के समाचार, फमेला कोमन फ्राल इन सैडन एंड ओसन बैनफोर और टेम्परेचर तुसन सी फंथिंग एंड नी खंथिंग खराड़े रहेगा। कल जब शनिवार है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 18 खराड़े 18 खराड़े होने वाला। उसके बाद संध्या रविवार को 20 खराड़े रहेगा। वीकेंड के बाद सोमवार को 21, मंगलवार को 23 और बुधवार को भी 17 खराड़े होने वाला है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, मिस्टर सानू एंड अलका।

ये मुलाकात हो जाने के बाद ये जमी गा रही है, आसमान गा रहा है, मिस्टर अमित कुमार और साथियों के आवाज में।

0: जमी गा रहा था, आसमां गा रही थी। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है तो आज है जून के 5 तारीख और आज वही दिन है जब हमारे बाप दादा लोग इंडिया भारत से सूरीनाम देश आए थे। और वो कहानी है, ये बात है सीफन तक में जब इंडिया से लोग आखिर द्रियन शासक जब इंडिया से हमारे बाप दादा लोग सूरीनाम देश आए थे। तो एक दो गीत मैं पेश करूँगा ये प्रवासी का, और आशा उम्मीद के साथ कि आपको जरूर पसंद आएगा।
1: 140 बरिस हो गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए सूरीनाम देश। सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत देश भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आँखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए, चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

कुआं पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिर खेती बाड़ी करती तब ढेर पैसा मिलत और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिला। अरे खेतवा तो मिलल बाकी बहुत महंगा।

पीछे छोरे के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम अपन देश हो गए। सरनाम अब हिया आई के पहुंच ली, अब इधर ही रहबे जिंदगी, अब हिया गुजरी घर द्वार बाल बच्चन, अब यही हमार देश सरनाम हमार देश।

0: रही बात है, सरनाम हमारा देश, हम सबका पैदाइश हुआ है सरनाम में, इसीलिए सरनाम हमारा देश है।
1: गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर।
0: हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन डे है, तो आज प्रवासी का दिन है, और 10 भाषा में इमिग्रेशन डे हम सब कहते हैं, और बहुत से जगह पर इस वक्त भाषण हो रहा है, जैसे कि डेन हाग शहर का जो बाजार के सामने जो पार्क है, वहाँ भी जोर शोर से इस वक्त भाषण हो रहा है। अगर आप घर पर बैठे हुए या आपके समय हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो।
2: जैसे अब राज त्योहार है, हैरवा के राज रहा, तो सोचिस कि वहाँ सोरा से सरवैया बिशनी सो फरिवार सब रही होकर कुश्ती वाला, तो सोचिस कि एक पठाई दे हुआं पर यहाँ, और हुआ जो सिंहा है तो एक माँ ढारी, और ये जो स्त्री अकर है तो लेके वो राजा के हम पहुँचा दे, तो वो जोन हरदी का राज है तो हम मैं दे दे। तब ये सोच के तो ओके पढ़ाई से बोले कि तू जा हुआ पर यहाँ कोई नौकरी कर, तब वो चिट्ठी लिख कर दी से, तब हुआ पर यहाँ गए तो चिट्ठी में लिखा रहा कि पहुँचत देर ना हो के माँ ढरी है ना, तब वो तनी पढ़े रहा हो लोहरी के ना, तब जब चिट्ठी खोल के देखी तो लिखे रहा ऐसे ऐसे हाल, तो गए तो ओकरे अखाड़ा में जाए के जरूरी ना रहा, तो वो बताए लोरिक बोले भाई हमहू के कोई पेंच सिखा दे ना, तो बोले भाई हमरे अखाड़ा के पूजा लागे है ना, तो गए अंत्य तार बजाई ना उनके अखाड़ा छोड़ के, तब सोरा से सरवैया बिशनी से परिवार ही सबके ललकार दी ठाँव ठाँव पकड़ी ना, तो बोले भाई तुहरे अखाड़ा के ही चाल है, तब बोले ना सब पेंच बताओ है, तब वो अब जब पुजका है लोरिक तब पकड़ पकड़ टंगरी लाग है चीर है, और चीर चीर खा रही लगा दी, तब खाली देव सिंघा रही गई, तब देव सिंघा बोला कौड़ी नौकर का मारो कौड़ी के मोल बिकाए ना, बोले हमरे तोरे लड़बे में राज भंग हो जाए, तब वो कहा पटकी सी तब मूड़ काट के बीघी सोकरे दुआरे पर महुअर के गिरल, तब महुअर सुखाए गई बोले कि ना, तो बड़ा गजब का ढारिस, तब वहाँ पर यहाँ अब हरदिक राज जौन रहा तब अपन कर ली लोरी और राज ले ली, अब वहाँ के कौड़ी तो ओकर एक स्त्री हुआ पर यहाँ रही जमुनी, तो जमुनी को राज दे के तो फिर चली आई गौरा में, तो वहाँ पर यहाँ ओकर एक लड़का रहा ना, तो 12 बड़ी दिन बीत गया, तो हेरवा के बेटवा अमर परेवा रहा, तब हेरवा मर गया रहा, तो ओकर बेटवा वही हरावर जा के देखे जौन पकड़ पकड़ टंगरी चीर के बिक गया रहा, तब वो का बोली कि भाई का है, तो ओकर मैं काजी ने भी जौन रहे ना, तो बताएं कि एक अहिर चढ़ी आ रहा, तो सब जितना फौज रही सोरा से परवैया बिशनी से परिवार सब टंगरी चीर चीर यहाँ खड़े ही लगा दिया रहा, तो बोले वही खराबर है, तब बोले हरदी राज जौन तुहार रहा तो उन लोरिक अपना ली सी, तो अब वो अमर परेवा हुआ से चढ़ल आपन राज लौटावे के, जब आए लर आपन राज लौटावे तो ओकर महतारी जोन जमुनी रही तो ओके खमिया में बनवा दी, अब बांस कटा चौफाला छिड़वा तो तेल कराही चढ़ा दी, तो वही छिड़के और मारे ना, तब जमुनी रोय रोय पाटी लिखे रही कि हमरे राणरी के जो कोई होए कुल में तो हमरे गुहार ला गए, तो जब पाठी भेजिस गौरा के, तब पाठी जब पाइस तब ले गए अपने महतारी के नाम ओकरे मजरी रहा, तो मजरी के दिस, तो मजरी सोचिस कि अब ही नहीं लड़का है और ई जाई तो हुआ जाई मराए, और एक नाव रहा अब होरिक जौन गई है, अब होरिक जाई हुआ कहा हरदी में, तो भोरिक जब पाटी पाए तब भोरिक पढ़े ना रहा तो लग गए अपने महतारी देखाई, तब महतारी सोची कि ना जहाँ ये पाटी ना सुनी तहाँ चढ़ी वो बहन है लड़का, तब वहाँ पर यहाँ ना बताईस, तब जतरा नगर में भजम घूमिस कोई डर के मारे मजुरी ना बतावे, बोले जो बताए दे मजुरी शराब दे हमार बाल बच्चे भस्म हो गई हैं, डर के मारे कोई न बतावे। तो चनैनी एकर उड़ रही वही चनैनी तो लैके गए रहा हरदी में, तब ओकरे लगे लग गई है। तब ओके जब देखाई सी तो अब चनैनी अब रोवे न, तभी सोचिस कि ना ये बेटवा हमारा है, ये बेटवा ओकर एगर हाल चनारा जी थे। तो बोले चल जाई जाई हुआ मराए और हमार बेटवा रह जाई चनारा जी तो राज करी है गौरा का दुष्भाव सोचिस न। तभी बताए दीस रोवे बताओ, बोले कि देख जो महतारी त्योहार है तो वह पर बड़ा मार पड़ा है, तो वही अब सहायता मांगे जो कुल में होए। बोले बड़ी सांसत करे, बोले बाँस छिरवाए के और पिटवावे है और तेल गर्मवाए के छिड़के है ऊपर में, और 12 बरिस के पोत मांगे है माल गुजारी, और ना ही तो अहिरे के जल जलमी करी ना और दे कर हुआ काढ़ी। तब हिमां सती रहा वो पनिया पियो अब उमर पियो अन्न करो गई गऊ के मांस ना बंद के टाए माला ना जीव में पड़े करार। तब यहाँ से गई है तब देवी दुर्गा ओकर सहायता रही, तब दुर्गा के सुमरी तब दुर्गा साथे गई है। तो बोले देख बालक समूह जा इंद्रासन तु जीते भुजो कैलाश तुहे इंद्रासन जिंदे पर लिखल है न, बाकी यहाँ पर तू आर ना पैजो। बोले चलो ओकरे जौन बाप मतारी है पहले हुआ पर यहाँ, तब हुआ गई है तब बड़ी लड़ाई हुआ न्यूरी में भाई है। तब हुआ जतरा रहा तो अब ओकर महतारी जौन परेवा कर रही तो वो पाती लिखी हिया के जहाँ बंद कटावे के रहा। तब लिखी कि हियाँ तो बोल रहे कि अहिरे के अहिरे न जे बाघे के अहिरे जइयो, बाकी काना अहिरे के अहिरे न जइयो। बोले हियाँ बड़ी सांसत मार कर रहे हैं। तब हुआ से आयल हुआ से फिर अब वो छोड़ के आयल हियाँ करे महतारी लगे अब होरी के लगे आई हियाँ पर यहाँ होकर अब बंद कटाई। तब तो भाग गई ना वो तो चल गई कि आए गई तो चल गई। तमने वो करे महतारी के अपने बंद कटाए के औले आई। तब पीछे कहे तब हुआ से आई है तब इंद्रासन ही गई है। दुर्गा बोले कि देख वो नेवरी बड़ा कठिन राज है। बोले वो ओकर माठ है अमर है कोई मारे वाला के ना है। तो बोले तू चल इंद्रासन में तोर माथ हम अमर कराई और ओकर हीन कराई। तब यहाँ से इंद्रासन ले गई है तो सब कहाँ कही था मैंने ठा में ठा यहाँ पहुंची हाल गई है।
0: दोस्तों आज पूरे 153 साल होता है, होने दिन सीफ तक साल होता है जब हमारा बाप दादा लोग भारत देश छोड़कर सिन्हान देश आए थे। प्रवासी का दिन है, हम सब कहते हैं इमिख्रासी दाख। और मैं कहता था मैं ज़्यादा तक कहता कहने के लिए कि बधाई हो, फिर भी बहुत से लोग हंसी खुशी मनाते हैं, बहुत से लोग दुखी भी है इस बात से। फिर भी हम सब सरनामी हैं।

जब हमारे बाप दादा लोग सरनाम दे साया तो सरकार जो रहा सरनाम का, उन लोग कहते थे कि ये लोग अनपढ़ है, अनखोल्ड मैंस, लेकिन ये बात सही नहीं, नीदरलैंड्स नहीं जानते थे, लेकिन हिंदी बहुत से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ लेते थे और लिख लेते थे भी, फिर भी उनको कहा गया कि ये सब अनखोल्ड है, अनपढ़ लोग है, ये बात सही नहीं है। आप जानते हैं हिंदी भाषा जो है इंडियन में तो यूनिवर्सिटी में भी दिया जाता है। आपकी बार मैं चुन के रखा हूँ जय जय श्री राम।

गीता का जन्म हुआ सरनामे, माता का जन्म हुआ सरनामे, हमारा जन्म भी सरनामे हुआ। कैसे आप कह सकते हैं कि सरनाम हमारा देश नहीं है? सरनाम हम सबका देश है। और ये नेशनल टैग जो है नीदरलैंड्स, वो तो भी था सरनामे जब हम लोग रहते थे। तो इस बात पे शर्म मत होना चाहिए। और अब की बार मेरा देश है सरनामे।

आप दादा लोग से कहा गया था कि कलकत्ता से 9 घंटे का सफ़र है और एक देश है सुनाम देश जहाँ पर बहुत से काम है, पैसा है वगैरह वगैरह, तो बहुत आप जानते हैं बीते हुए दिनों में कम लोग को बहुत कम काम थे, तो लोग इस बात को मान गया और ये झूठी कहानी जो था 9 घंटे का उसमें विश्वास किया। तो आगे चलकर क्या हुआ कि ये 9 घंटे का कहानी जो था ये 9 घंटे नहीं था लेकिन 90 रोज का, 9 घंटे दाख लला रुख से छूटा है हमारा बाप दादा लोग इंडिया भारत या कलकत्ता से, तो आकर सनाम देश पहुँचा। सनाम जब आया तो सभी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला और 5 साल बाद आपको मौका था वापस जाने को और ऑन द थ्रिल्ड उन दिनों का 100 रुपये पैसा आपको भी मिलता। तो बहुत से लोग हैं जो वापस चला गया भारत देश और जो सन्नाम में रुका उन्हें एक टुकड़ा ज़मीन मिला और मदद भी किया गया, तो लोग रुक गए। लेकिन सही बात यह है दोस्तों, ख़ास बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट और बैठे जब काम करते थे तो जो बताल में एक बताल मिस्त्र था मिरंदा, तो मिरंदा ये लोगों से कहा कि आप लोगों पैसा घर पर रखते हैं अच्छा बात नहीं, मेरे पास ये पैसा छोड़ो और ब्याज के साथ मैं तुरंत आप सभी को ये पैसा बेतुरंत मिलेगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का समय जब ख़त्म हुआ तो लोग जब गया उसका दफ्तर पर तो दफ्तर बंद था, मिरंदा भी फर्दवैन एकदम पता न था कहा आदमी था। ये भी हुआ है हमारा बाप दादा लोग के साथ।

दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होगे, खाली सड़क है, एक फैलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश का शुरुआत हो जाता है, आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, आप फिर दूसर बगल, वो भी दूसर बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, ये बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ ही साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया है दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जाली था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं चाहते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनील दत्त के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद वीएनटी माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद, देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था, लेकिन एक दिन के बाद है देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा, और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया, तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा। तो उही दिनों से, उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों, लेकिन राज कपूर जैसे मैंने कहा कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर से इन दिनों में तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है, लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा,
2: राजा,

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक डकैतर कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे महबूबा। ये तस्वीर का कहानी दोस्तों मुझे याद हो गया बीते हुए दिनों में सुनाम देश में जब लोग फिल्म देखते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हेलन का समय आते थे एक का तो लोग बहुत से हल्ला मचाते थे। हेलन का बहुत फैन था दोस्तों, ये एक फिल्म में हेलन खेले थे, फिल्म लोग दो बार या तीन बार जाकर देखते थे। और फिर भी आप जानते हैं ये तस्वीर जो है फिल्मी स्टार्स का तस्वीर जो है ये लोग परमाणु का बाजार या बड़े बड़े दुकान में भी बेचते थे। मार्गदर्शन रात में वहाँ सड़क के बगल में भी एक आदमी तस्वीर बेचते थे, लेकिन अगर आप गया वहाँ और पूछता कि मुझे एक हेलन का तस्वीर चाहिए तो वो सेल आउट, हमेशा वो बेचा जाता था। जिस हेलन का तस्वीर आते थे लोग खरीद लेते थे अपन बटुआ पोर्तोमनी में धर कर और घूमते थे। उन दिनों का शौक यही था।

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पद्मश्री उदित नारायण एंड श्रिया घोषाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइस पाए जाते, लोग तफोरी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं सोच समझ के कै

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छू।
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुए। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निखिल फिरन तख्तक में बना था, वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी निहनी स्टीफन फेस्टिक में एर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव। निहनी स्टीफन फेस्टिक में एर्मिला देवी के साथ हुई और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निहनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग दोस्तों, एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपार्थ आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उन्हें उफन करते थे। अमरीश पुरी वैसे तो कई अवार्ड भी पाया, निजी अख्तन शास्त्र में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1986 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1989 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1989 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटी रजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनों,
1: सिंगर, अरे तुझे भी सुनो पापे।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजिर बांधे। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से श्रीकाल है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हम आ गए हैं आज है शुक्रवार। शुक्रवार यानी फ्राइडे है। आज तो समाचार सुनाने के हमारा काम है। और आज शुक्रवार फाइव यूनी हिंदुस्तान से एमी ख्रांसी दाखे में से। और आज हिंदुस्तानी हम लोग के 100 बरिस हबड़ा हुई ये है। अभी आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे जो पूर्वजों है, हमारे बाम दादा जो भारत देश से छोड़कर आज श्रीनाम में गए थे, आज उसका जन्म है। यानी कि एमी ख्रांसी दाख है, इसके बारे में अभी आप लोग को हम बताएंगे। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे हैं, कभी कभी खट्टे हैं। और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। तो हम तुरंत चलते हैं। और कहाँ चलते हैं? वातरकांत सुरीनाम के ओर हमारी जनता। सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोषित होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारी जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी और पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक में से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है। लेकिन तो पानी दोस्तों, साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके, राजा साहब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन न खाली बारिश भैया, स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया, स्कूल के जितना यूफ्राउ मिस्टर रहा उस सब स्टॉकिंग कर ले रहा। कारण कि उस सबके पैसा ना ऑफर हो करत रहा था, अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करिस। इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिस स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहू सब मांगे अपन लोन्स फॉर हुकिंग मांगे हैं। अबे ऊ ना शुरू भेल है भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के हैं अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एट ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे सब मांगे साक्षी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सूरीनाम के खजांची है, वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफद्राट लूटे रहा, सूरीनाम से पोस्पार बैंक के क्रोमो लूटे रहा। तो हम लोग तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे ना भूलियो जा के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सूरीनाम के 5 तारीख यूनी 2020 तक के सेंट्रल बैंक के कम करतन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आए ले गो प्लेंचे पे और फंड बैंक के प्लेन चप आए ले और सब हुआ पे अब्बा और बोले हैगा आन दाख फ्राग फोर सोरखन फ्रागन सिनियालन फन मीडवर्कर्स ओवर द हेर्स इन द फिंगसी हुईस के बारे में यह जा रहा है और बोले हेड बस्तीर नुम द उट ब्लाइफन फन रियाक्सी तलूर स्टेलन एंड सेक द ऑन्टविकलिंग नो लेतन द ब्लाइफन फोलखन। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में हंड्रियन फेफ तक यार 153 हाँ हंड्रियन फेफ तक यार हो गया है सूरीनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन एक्टिविटी तो है। यहाँ दनहाख में भी एक्टिविटी तो रहा होमार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भइल है हमारे जो बाप दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट और बेदस जो लाला रुख पे नहीं 1800 तक में सूरीनाम में गई है। तो वहाँ के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं हंड्रियन फाइव तक यार हो गया है। तो बतावे और खान शांसी वैस एरोप दद इस्ते हिंदुस्तान से एमी खराची जो रहा बोले हैगा ऑन बेरिंग इन ऑन टीकर है एन उद्दाखिंग फन अ बलांगरेक बैदराग अन हैवर गलीवर अन द इकोनॉमी सोशियल एंड कल्चरल ऑन्टविकलिंग इन ओस लांग सूरीनाम में से दोर कस के काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके दोर से तस्फर मौका रहा। तो जितना अभी हमारे औद्रे है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हा उसको हम नहीं जानते दोस्तों। तो ये सब तो भारत देश के रहा। तो बताए गए रे बाबा माई मोनी मेंटल लगे सब गई है न्यू आम्स्टरडम कॉमोवेन में सरमक्का खरोडिंगन पे गई है निकेरी में सब भी गई है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाख कर लेबा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम की ओर। हाँ तो आप लोग जानो हैं ओएएस के बोले ओ मिनिस्टर मेलफिंग बोवा बैतलान से साकर के बोले हैं का ओएएस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदेन रहा पहले फिर हपी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलान से साकर के उचल गए फिर ओएएस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया। तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवाण वक्त रखेरिंग इज द आउटकम सिंफाना मोगल का अंदर सुख अब फॉर दैट डेफिनेटिव स्टैंड पे वर्क नोमन द बाउफाल उन खाली अगोरे है कि कब ये नमिया के बारे में छानबीन हुए। तो बतावे हैं मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नीट इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेथलिक वारहेट इज इन द क्वेस्टी फॉल्कस हेम साले इवेंचुअल अंडरसुक मुतर ऑफ वेसन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक हुए हुआ एस में बताई गई है वीस एयर ऑफ द रिक्वेस्ट यू अंड और दिस को वो तेरे ने मेसे रेसेंसी फरकादरिंग। तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोन जाने हैं स्ट्राफ रखत लग जो से बन मांगे हैं ओ एम और ओ एम पठाई से गा काने के अने दे ना में कि हम लोन के माख है फरोरदेल करके ऑंडर सुख करे के बारे में बेकर बारे में बराइट हम आप लोग को बताएंगे हमारे जनता की तोरिया कैसे हैं। तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन श्री नाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है अन्य तो के नखफसी दनेस तो ये भी एनडीपी भी एक बारे में बतावे है दोस्तों। साथे साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया, हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में, तो के बोले है ब्लास्टिंग कू भैया, हाँ गाई ब्लास्टिंग कू के बारे में यहाँ पे बताए गए है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो गीता जी भी आ गए हैं, ये कौन गीता है, ये गीता बिहारी है हमारी जनता। तो गीता बिहारी आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। तो बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ, तो साथ ही साथ और समाचार यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई यहाँ पर बताए गए है रोफ जो है चोरी चपाटी बहुत ज़्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले है सिपाही के घर में से सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए और आगे इंस्पेक्टर के गए है अंदर सुकरे पीछे सिपाही के घर सब इतना ब्यूरो के बीच में से कहानी कितना दे यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया, कितना क्विक चोरी हुई के देशवा में से। ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फैलक है बस वही में से चोरी है तो सिपाही के मीडिया वर्क से भैले कि ना भैले भैया, ये तो 100% है सिपाही यहां पे 24 घंटा रे बड़का कंटेनर में भैया उतना ढेर क्विक चोरी हुई के एक बारे में देना में सब खोज भी बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहां टोनी इसरी भी आ गया है, तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के ओकर लगे देना के लगे ओएम यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इतीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे की अंदर सुख करी सकवा के ना, और इतीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अभी तक फरार है रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के, तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे नामे और घीचा तानी यही बल वही में और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा यानी कि गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है बोले जैसे पहले बचाए रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है बोले उ सब चीजों ने करे है मैं इफर खदरिंग इतना क्रासी गए ले भैया कि दे आना में गए है सब और हम सब फॉलो कर ले भाई कि वहाँ पे कैसे किस टाइम करी सेगा देना में कि इस फरफोलक कोई होई कि ना होईगा एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड ओकर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और सोमो हार्ज इंस्टाट फन बस्किल किंग होई गए है अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अदमीरों जो नया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा कि स्टाफ staatsbeschuldiging mee. Somo Harjo. Aur oka bole hoofdraad Anur Mohammed ke. En staat van beschuldiging stel kas ik heb OM ke chahin jai ke. Is heb ke onderzoek kari kaise hai. To konchi chori kalle konchi na chori kalle hai. Ta jo nationale assemblee sa name hai. Donder dak de vordering van de PG behandel kari se. Om gewezen politiek ambtenaren. Tino na moa jolle di hai. Sab ke jahin jai ke. Op onderzoek ke. NDP werden vragen gesteld over de volledigheid van het dossier. NDP wolle hem na mangela. Ik er baare me batia. Wolle hem mangela volledig dossier hoe. Waarvan Gayadin or Adamien bolle toke na hoefte sa bolle to onderzoek toro bate. To PG na bate. Wolle PG je toke kagaj patais ke damia ka mangela tor admik DNA me onderzoek kere. Omdat u kuch kari se. Ta hamar kaam na sab ke veroordeel ke hem luk ke kaam he. To stemming dewe ke PG ke OM ke rechter ke kaam he bepaal kere ke. De meerderheid uiteindelijk toch opgelucht mensen. Heel veel mensen zijn opgelucht. Kies gewoon onderzoek hoi. Niet een mooi iets is op deze loot chori kerker. Or mouch kere he bhaiya. To VHP, NPS, BEP, ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke. Ki rechtbank is niet. Bole ki geen rechtbank is, bole DNA, bole rechtbank na hai. DNA is geen rechtbank en niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onafhankelijke rechter uiteindelijk een ikerbare mee bole ke. O NDP, choruwen ke khali bachawe bhaiya. Choruwen ke khali bachawe hai to ni ki ikke na karte, ikke na karte, ikke na kar. Aan chora log ke bachawat, bachawat. Hum log ke desh barbaad hoiye. Abbe ohi platwa. इस सब ड्राई करे हैं तो फरप्लेख ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे की ना जे ना मांगत रहा ऊ साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि ता फोर्से तर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर्से वार्डी मर फोर्से बोले जा तू बोर दिल कर बोले हैगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर पीके टॉट इन स्टार फॉर बस्कुलकिन स्टेन फॉर थ्री फॉर्मल पॉलिटिक आमतनारन. Daarom is voldaan we wettelijke vereisen op grond van artikel 140 grondwet in staat van de beschuldiging stellen van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijke onderzoek voorzetten. Dit is dus een hele goede nieuws mensen. Die op Kabul hega OM vrijba ik er baare mee. Onderzoek kreeg ik bij hem te PG. Hem loopt in Suriname. Ke straflechtige onderzoeken kunnen verder naar de besluit van TNA. De ik er bij hem een PG. Hem loopt hier op apart partij. Ze die op Oesab Jaas heb je onderzoek kreeg. Ingestemd met de vordering van de PG. Op het eigen hij gaat oud-minister Klimmerhoofdraad. Openbare werken nationale Noor Mohammed ke. Aur Noor Mohammed ke baat mein Brunto Somo Harjo ke. Aur yani ki sab ke de vordering van de PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend naar de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Dus hem wil je aanplukken. Hem, chota roep me bataai, ki sakwa kaise hai hamare janta, hamare pyare pyare janta. To ee joon malai hai varon to bhaiya bahut jor छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्टक हुईये और बोले उल्टा पूजाने सब कोई मेरदर है तो के बस्कुल दख कर दी तो ही आपरे बोली सेगा नीमा स्टार बोफन हेड फॉलक ओ ब्रुंतो नीत तो बोले हैगा अब इस सब एडवोकेट लेके अपन साख लड़िए पेल असेंबली फोर्सेटर असेंबली ले और समो हारजो पाउल समो ब्रुंतो समो हारजो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apreu op teken kan dit ki mag hai, oké? Want u jane akeel u thoro bolega ki hamme na maktul ke onderzoek kare. Grote deel boli sega ki sabke chahe onderzoek hove ke. Ta apreu teken kan dit ki haan. Chahi onderzoek hoe ik. To dosto Suriname ke duane bhaiya ab dekho tamasha kaun chakallas bhai le bhai kaun chakal ego aurat ke bhaiya ego aurat hai ga duane major worker bhaiya Faraz bhai le Frau kehrt zurück von vakansie एगो और फकांसी से लौटल है भैया, कहाँ गैला लौट के। तो भैया सुंदर हीरा आपको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेसी के जोन आज जोन फाइव यूनिक के होंद द्रियन फाइव तक यार भैल है। तो आपको भी बधाई है, जितने हमारा हिंदुस्तानी हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं। तो यहाँ भैया दुआन दुआन भैया फर्रास हो गए कि औरत गई ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आई ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमने सुरीनाम से आयला ते का बोले मछरी लाइला भाई मछरी लाइला कड़ाबू लाइला। अब ई औरतिया गैला फकांसी से भैया एगो स्विट्जरलैंड दैट इज व्हाट अ फ्रॉ इन द स्विट्जर सप्लास टाइंग दे इज अ वीक द दुआन हट एर इवन ड्रुक में भैया दुआन मीड वर्कर्स जो रहा बे द ग्रेंस ओवरगांग फान टाइंगन बुधवार के एगो बस्टेल बिश उज्जर उज्जर आयल है सो वेल्डन वेतन वाद द शफियर दी तरह कौन फन फकांसी फर फूर्द बोले फक कौन ची लाई से बोले द फ्राउ इन एट बेश खाफदार खोर आन एर बखोन हर बखाच ऐत तपकन शुरू करी से अपन बखाच ऐत पकर बेसुआ से भैया फेफन फेफ तक कॉफर ले के आयल है भाई फकांसी चल उटल है। अब बोलिए का धनी भैया दुआन बोले अब कौन चकल्लसी भैल है द ए न द अंदर कॉफर्स क्वामन ए द फुरते मा ली फेफन फेफ तक कॉफर्स इन टोटल द दुआने मेड वर्कर स्कैनन से अलमान एंड ट्रॉफर निच गेक्स आन से बफासन डिफेट्स पर्सनलिक स्पिलन सेक्टर वर्ल्ड फुरदर फ्रॉम द स्विस फेडरल ब्यूरो फॉर द दुआने ते दुआने ई स्विट्जरलैंड के बाद थे सर नाम के बाद ना यस के पोल के एर वाज निक्स ऑन बसवार ते इखन तमाकन इट इज ओवर एन अलगमेन ओक नीड फॉर बोडन मेंस तू चाहे 1000 लीक ये कॉफर ना सुन 20 मिनट वाज द सिचुएशन अफहंडल दिस सॉर्ट दिंगन होरन फॉर द डॉक्टर द रूटीन फॉर द बाकी 55 कॉफर भैया हरे दादा रे दादा कैसे ई ढोई हुई और कैसे ई लेगी हुई हमारे बयान जनता तेरी सोचो 55 कॉफर इस नीत हीर मेंस। तो हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहाँ बताई भैया एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ बौश बरख तो लोन जानो भैया ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ सेल्फ मोर्त बरेको का नाम चाहिए ये ही देखो भैया जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया हीरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे तो ऐसे को देर तक यार के अनमी गैल है भैया बौश ब्रुक पे तो हुआ से टेलीफोन करे और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है न बौश ब्रुक में से कि अब हम जाएला कूदे हम जाएला कूदे भैया अपन फैमिली लिट से है नेट फॉर नेम दैट फैमिली लिट से नाम से पॉलिसी ओवर फोर फॉल हिफ के इनफॉर्मेट और बताए गए है का रात के बातचीत है वेर का बेल्फियन वीडियो का स्प्रेक टेजेंस का स्प्रेक ये भैया बतावे है का हम बहुत शुभ्रिक पसे बोले हम जाएला कूदे बोले देखियो तो लोग कैसे हम कूदीला तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे कोर्ना दे से मेल गए वेर द फॉरबिडिंग फॉर ब्रोकन बोले फॉरबिडिंग व्हाट रुक गए और ओ हीरो से ये रमिया ना भेटा ने भैया कोई के ना मिलल है सिंस दिन इस खीन कॉन्टैक्ट मेर खबीज में ने बी एम तो फरमूड लग इस दे से मान नतुल इन हेड वाटर ख स्प्रोंगन में से हम जाई तेरी फानत हो को है स्ट्रात के बारे में बहुत भैया आफत मचले सरना में जोन में सरना में गाड़ी चलावे हैं आपके तो पता रास्तावा में भैया हम का बोली जैसे काउ फूतू हो गए आसफाल में काउ फूतू जैसे हो गए भैया मां काउ फूतू में तो अबे तो गोड़ घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई स्लान हाउस स्नान के बीच में फनो हुक है स्नान कि आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुस जाए जो समय पे फिर यहाँ पे रहा भी ये प्रॉब्लम हुआ रहा तो ये रखे रिंग हुआ लोन क्लाक करत रहा भैया अब वो ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए है अब जनता उल्टे गरियावे है एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कौन ची करे है तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घरता खदेट लग ऑन कपे 105 तक मीटर अब बोलेगा स्लेक्ट तुष्खान फन वेग द अफलोपन प्रियोड अब इसे मांगे हैगा फन ढूक है बहुत तो दृक्ष बरीदन वीखन उतरा ओतो हुआ चले फन रोक इस रात में और उसे मांगे चार तारीख यूनी के चार बजे वो छः बजे लेक मांगे बंद करे टुक्का और एक टुक्का मांगे सेवन अस्फाल तेर करे भैया वही बात है वेर बुरुकू और पूर बुरुकू हम लोग निगरे में बोली ना वेर बुरुकू चपटावे भैया सुंदर भाई जैसे कि कोई जब ढोल बजावे है और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना और जो नदमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है तो उस समय पे मोटा सौका को पहर के अच्छा करे ऐसे भारी भारी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया जैसे चिरई हगे है चारों बगल वैसे सबन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइट ओके परमानेंट ही लमाल अस्फाल तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनहूक है स्त्रात बना देवे है तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे हैं तो वहाँ पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए हैं आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज की हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रास्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया जब वहाँ गए ले पिकादू स्त्रांत में तो बताए गए हैं वहाँ पे एगो त्योता फित स्त्रां भाए और बोले वहाँ पे दकते गए ले वैसाख है दाद फर मुडलकस के तो सामन में ना अंदर खराई से तो फत्रों के अंदर रखते हैं तुरतों ना दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो ना जाए इस नाम में स्कोटन खलोस बे बार हिल्स को फोनर ऊपर पार्किंग टेरेन तो सुरिनाम इस ऑन फेलक मेंस बार और में ना जाइयो हम में भी एक मनिए ठंडा बीर ना तो अपन घर ये मंगाइयो भैया ठंडा ठंडा पार वो बीर और ओके खूब नच से घरे पियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोड़ करोड़ ही मरियो ठंडा ठंडा भी धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है धन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दी हो भाई वन असाय तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परस ये माई के लूटले वे है दिस ओहू चीजवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है बताइला अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ना मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस खोसांत है के अभी का बोले भैया सुरिनाम में सिस्टर सिस्टर भैया ना है सब खोजे फर प्लीक कुंद खके तो मिसी काबा का बोले फॉलोस खोसांत है कि अब वो का करेगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्त पे मतलब लांटी के कोस्त पे अपलेडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फर प्लीक कुंद खे तब बोले जेके हम लोग लेस देवे तो के फर प्लीक 5-6 बरीज फॉर प्ले खसा नाम में काम करो कर बाद में मांगी बैठा लान तपन जाए के काम कर सके है आंद्री मिशी काबा के पलाने भैया ऐसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सब के मुँह से पक्का ले रू मांगे उस सब के अप्लाई देंगे भर देवे पांच बरिस फॉर प्ले कर देसो हम का ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैठा लान में काम करो है फेट दैट इज सोन ग्रोते vraag in het buitenlandse naar Suriname verpleegkundige maat hebben ja Nederlands met heel likele, lekin aapko hum Hindustani me phod ke taris batai dei hai ki ekar planning ka hai bolega van week het feit dat ze 30 duizend SRD niet kunnen betalen usse utra hai opleiding aur tabale hum lo bharab het is win win strategy omdat we niet meer kunnen hebben dat wij mensen opleiden voor het buitenland de dag waarop mensen hun diploma krijgen kunnen ze eigenlijk al in een vliegtuig stappen en weggaan. तो ये बात है हमारी जनता मिसी काबा के प्लान है भैया मिसी काबा का प्लान है ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मोई से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए अब देखो भैया तो लोग जानो सुरीनाम में दुकान में के आगे वॉर्स बड़ा गरम गरम बिका है तो हाँ गरम गरम वॉर्स हुआ बिका भैया तो गरम गरम वॉट तो हम भी कीन के खाए भैया मुर्गी के तो यहाँ बतावे है कि ऐसा जो आदमी वॉट सोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉट्स फॉर कूपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वर्सवा का नमिया दागी समझाई नहीं वॉट्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर नूमन वॉर्ड द नमान सेल फॉर यार दक सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तु क्रिमिनल ओप ब्रॉन्फिस ते प्लास फर्स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेंस्ट्रात दैट बकेंस्ट्रात आज पिल्लू कोनो पिल्लू भैया बकेंट है पिल्लू के नाम से और कोनो के पिल्लू नाम है फॉर फॉल्कट साल दे प्रोसेलिंग ओ पिस्तौल और दागी से भैया इस सब के फरियारी दुकान के आगे मनावत रहा सोना के केती घींच के लेके चल गए है द वॉर्ड फॉर कूपर फॉर सेट से खीफ वारना एगो वॉर्ड स्टिलिंग भइल है Deze confrontatie vuurde de rovers gericht op hem. Na het schot rende de verdachte terug naar de bronfiets. En ik er ketie leek op hugge. Bole, ab jou, pino words, to bitch, oh, bhaiya. Words, words, karie. En bole, de gewonde words verkopen kreeg direct. Sipahi ail he. Direct omgeving mee. Samen zetten ze achtervolging. De bronfiets waarop de verdachte waren gevlucht werd later onbeheer aangetroffen. Mon plezier mee milel he. En toen jane, bhaiya, isab churu. जंगल बरा जोर कूदे है भाई हम रोके थी सब निकेरी में कपड़ी घींची से कपड़ी के लुंडन छोट छोट घींच के और भगल है जब दौरैली भैया तो जंगल में घुस गए हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ केती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन केती की ना जाई मां हम ना जा भी छुड़ी भकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है तो भैया रांच आपको भी हम अपनी प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं तो हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं आप लोग जानो है हुफ दराद कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बकोक और सखवा चले है और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर सेक्टर अधीन से हुती हुफ दराद बराई अरे कैसे तू हुफ दराद के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दोंदरदाख मेदाख के ओमपंबारे मिनिस्टर तोत हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फॉर्मालक मिनिस्टर हुफदात रियाद बरुंतो के तेजा फरखादर रिक्त फे यहाँ पे पार्लियामेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक दिल ऐड मांग दर फन कमिशी दे हेड फरसुक ही ऑनर सॉक अन फ्राक अन दे एना फोर्सेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेतन ऑफ वेलकम वेसेड फॉर्मालक मिनिस्टर क्लीमर हुफदात ऑफ द होक्ता वास्क स्टेल फन द इन tiende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vorderingen zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u, voorzitter: hoe heeft u de heer Hoefdaart bereikt? Dat jogito puche bole tukaise bereikele bate adhinwa. Voorzitter, bate worden meer verhaar he. Bole tu bole sub adamien kit op de hoogste. Zal ab adhin bataona. Adhin reageerde. En met een glimlach. U weet dat er zijn raadsmanen antwoorden. De parlement voorzitter. Aur bhaiya Mahabharat. Nauro padhal he. Gita kaise dhyan dewe he. Ehi adhin. En hier pe chhoot bole bhaiya. Bole hega tu jane. Raadsman advocaat. Use. Uka bole contact kari se. Hans ke bole he. NDB fractieleider Ibu Jones concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Jota Jones tot de kutere bij ja kali oker. Voordeel meer het en meer kan je bij ki iedereen mag iedereen vragen stellen. Sabke mag je vraag stellen. Dat is het gewoon, mensen. Of je het heen bent, of je president bent, maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. Tony, Amskobhiham, Janneke, Hindustanse immigratie, ke, bahut, badhai dete hai, tam suchila, jitne log hamara Facebook pe hai, sundar hira ranch lagan, aur chitra, aur Janneke, isri, Tony, Raja, Jodhya, aap sab ke liye ek geet hum chalate hai, aur milke isko suna jai, ye hai hamare परवसी के कहानी
1: 140 बरिस होई गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए ले सुरिनाम देश सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबर इससे आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत देश भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आँखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए, चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू हुई।

वेद के खड़तीन श्रीराम देश चले। वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खड़तीन खेती बाड़ी करती, तब ढेर पैसा मिलत। और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलल। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत मेहनत करी, धूप में बहुत मेहनत करी।

पीछे छोड़े के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम अपन देश हो गए सरनाम। अब हियाँ आई के अब इधर ही रहबे, जिंदगी अब हियाँ गुजरी।

तो दोस्तों ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं यानी कि हंड्रेड एफएफ तैयार हुआ है हमारा एमी कराची के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउन के तमाम कोलीखा डायरेक्सी लीडर की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसिफ भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं हमारी जनता। तो बातचीत ये है हो रहा है सूरीनाम में, आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सूरीनाम में, क्वेक के बात हम करते हैं। सूरीनाम में क्वेक जो है चोरी भय ला भैया, अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूसिशियन पॉलिसी के हनीश मरोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके तेकर बारे में एबे जोंस अब ओम चटकल के कहे फरकवा तो स्टेल। अरे भैया तो बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हुई सके। तब एक बारे में कॉर्पशेफ मेल्फिन पिनास जो है वुड्स दाख द्री यूनियन के गैल है परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबर अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल साख सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आउट एन कंटेनर फन अफदेनी फ्रॉड एंड ऑन ट्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में हुआ पे एगो पार्क है भैया, और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है लेके हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया। और जो पोकलेनों गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले है आदमी जड़ जबड़ आका कानी से इफन फिर तक बोले कौन जी भैया जबड़ जबड़ बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे। और घर में अब सब इन बूदल है, सब इन बूदल है भैया, तूर तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है ओकर घर जहाँ पे उसे 20-25 बरिस रहे और गई है सब घर तुराई गए है। तो एक बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गई है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई करी से चीवा बंद कर दी से स्टॉप करी से। और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जोन हुआ पोता जबड़ जबड़ अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकियन लेकिन उस सब के रहा कि स्कोतु सूरीनाम के ना अनपक क्रिज में सो वापन लेके हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जगहियन जितरा हैगा त्वेई केर बिचान है भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फीला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा न, न, अने कॉम्प्लेक्स के तब वो सबके घर तुराए गए। एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है तो अब यही स्कोतुआ मेल्फिन पीना स्कॉर्प शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है ऑनर सुख गए करे क्वेकवा कैसे चोरी भैल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर द्वेनिंग फन हु फील है क्विक कॉर्प शेफ नेम द साक hook up and heeft direct aanvullende veiligheidsregeling laten treffen और जितना चीज अभी कंटेनर में रहा सब हुआ से फ्रोइसी करवा दी से। अब फ्रोइसी तो भैले भैया क्यों कहाँ गए ले फ्रोइसी के सिर ना किसी भाई विश्वास ना है भैया प्रताप अवतार विश्वास ना भैया बोले हैं जे के मूस के धरियो और कैसे बोले बिलार के धरियो ना भैया हीरा दूत रखावे तो का होगा। तो हमारा फतिंगन रामराज भी आ गया है, आपको बहुत प्यार से स्वागत करते भैया फतिंगन। तब
धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे कैसे वो रखाएगा। तो कौरव शेफ अब गए अंडरसुक करे कि चीजवा कैसे है और इंस्पेक्टर बेल ऑफ द इन फ्रॉड किंग पिनास ओक ना आनखिफ्त दींस और बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में भी गए अंडरसुक करे। डेनिस फिला पार्क सॉर्ग फॉर फील फ्रागन ऑन मेर ओवर द रोल फॉर द पॉलिसी टेडस द ऑन naar de aanleiding daarvan is middel een onderzoek gestart door een gespecialiseerde eenheid van de bestrijding van zware criminaliteiten. Gebaren mee, to fila parke mura, to lo ketra ketra ghar admi lo ke in budal bhaiya jema irko lagal ais kasiye ghar mein abbe sab in budal hai ketra admi hai ka jo unke hua fakansi hai is banaye ra apan ghar banaye ek raha aur gwaito land mein kaam karat raha jaye jaye dheere dheere apan ghar banavat raha ketra admi jo rahat raha bhaiya sab ke ghar टूट गए हैं तो बहुत दुख के बात हैगा। सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाई तो एनडीपी का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फॉर थिंग यार लॉस ये नीट इन फेफ यार ऑफ हा और बोले मोदर पुल के बोले चहटान जो ची है बोले जो धसान चहटान है बोले है दस बरिस के बोले पांच बरिस में थोरो बोले ओके ऑपलॉस कर पावे। वो जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है। एनडीपी कमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल द रेख दत मुदर पोल नीत इन इन स्टाप कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर वर्गलेकिंग एक्टर ओक फॉर टूपासिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन रेगुलेटिंग सेंट टोकन 2020 आंट्रोप अ फाइनेंशियल मदर पोल द टिल्ट गेड्यूरेंड 10 यार इज ऑनस्टान लॉस इन नीत बिन इन 5 यार बोवेनिन वर्ड द एस्ट ट्वीर रेगुलेटिंग overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De दस बरिसिया के चहटा में लौटत रहा भैया तो अपन चहटा जोन में तू लौटत है अब जाओ अपरो एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में न हो ये सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकी सिंह तय चेगा तो चहटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लो करके फिन बैठाओ फिन बैठाओ और वही में

सुधरे वाला ना है हमारी जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, जॉनी के कहना सफा बात है। अच्छा लगी तो ले लियो, खराब लगी तो हमारे। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फे के नूर सालीम के बारे में, यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन, जोन समय पे एनडीपी के समय पे ई परामारी बहु के देश ही रहा भैया। और आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन नकल ले रहा कगचुआ तुलों जानो ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गए रात भर में, वही नूर सालीम है भैया, वही नूर सालीम है। अब एनडीपी जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एल्फेफी के मिनिस्टर बनाई से भैया। अभी एल्फेफी के मिनिस्टर तो बन गए हैं, मैं एल्फेफी के मिनिस्टर तो बन गए हैं, एक कर बेटवा कौन चक्कर लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है। ओके नूर सालीम, माइक नूर सालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फीतिल एंड फिशरी एल्फेफी के, एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नराइन भी आ गया है। आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया, और एक ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई। हाँ, और ये लांटी के ओतो चलावत रहा, बोले है तेबे दुई मानद वर्दन, और बोले है कि 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समन रूफ करी नूर सालीम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई। यहाँ बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौन ची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे। बाप है मिनिस्टर और लड़का ने देखो का करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है मन लड़कन बाप माई के नाम गिराई दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और बेटवा और करेगा और है वो बन रहा भैया, वो निकल है। तो लड़कन अब उधर एगो और भैया गाय चोरा रहा के गया एथनल के बेटवा, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन ओकर नाम गिराई देवे। ऐसे यहाँ पे नूर सालीम के बेटवा एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एकर बारे में अनखिफ्त भैले भैया। पुलिस ही मांगते इधर बकेंदर बेदे फरदख्त न ओफले सिद बेदे ओएम द साक वेर फॉर फोरखन फोरखल एक ऐसी लगे। और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंडन जो नहीं दिन स्फूर्त से ऊपर से भैया एयर पॉलिसी ऑनर सुख ब्लैक दर फरदाख्त से इन दिन स्फूर्त फॉर मिनिस्टर फॉर एलफीफी फॉर प्लाटसन तू से ने मिंदर यार का ब्रॉम फिसर तेगन क्वामन volgens de aangifte zou de slachtoffer vervolgens tegen zijn wil zijn meegenomen als op persoonlijke mishandel wie kan die zeggen ja to lanti auto dewe heiga minister lukke ki okar betwa jao chalao aur dam pe payo koi ke roof kar liyo ee hamara desh hai bhai ee hamara desh hai janta hua blasting bhare hai auto hua ke janta ke blasting se to hua ki na hai aur minister apan betwa ke वे बोले जाओ रूफ करो। ई भैया कैसे देशवा चली, और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है ई सब फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मिस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोड़ देल। तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बेन ही एक अपील माल खिन फोड़ देल में निमान तो सच्चाई अन मीडिया मुत ऑलटेड फ्राई कुनें प्राते फ्राई कुनें प्राते जैसे है ये मुत निमान फोड़ ट्रैक। जब नूर मोहम्मद के में इंटरव्यू करे जो बदमाशी करी से चोरी करी से तो ओके चाही जहल में जाए के सो इसत ओको फर्दी रखेंग ना चाही करे के। जब हुफ्दरात लूट के गईल है तो ओके चाहे जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तलो हाथ दर के ओमदा तू एनडीपीएर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के सो कान।

0: लात नी दोर खान अबे को छोटा आदमी घरे चियो पड़ते ही देखो इसे के धोई सके आसान भले ही के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है इंग्रिद बाउटर्स बोले हुफदरार के न चाहे फोर डील करेंगे एगो मलाई नहीं बोले है अधीन जोन फोर से तरह आसान भले ये छोड़ के चल गए हैगा तो हम लोन के रेक्सटाट कहाँ है श्री नाम में दोस्तों अतिस बलखलक फॉर ओन स्लान श्री नाम Daar gaat het om. En dat is gewoon de waarheid. Hem kritiek voortrekken. Nakarila. Toen dan hem jij, bhaiya. Ab jayyo Suriname des me. Ta huwaan pe, bhaiya. Holland ke kutta payyo. Ta kutta huwa. Joon hai, bhaiya. Bara jabar nakuna hai. Oke. ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे है झुर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया और कोका जो सूही तो वहां टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर से जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और को कहीं न तोर पाई जाए तो नीदरलैंड के अम्बासादर जोन बा सूरीनाम में कुतुआ के देश से ऑफिशियल ड्रिक्स पीसो तो जितना आदमी ड्रिक्स फ्रिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बारे में कॉल लग के मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है एट मिस ऑफ फन फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मी द बास्ट बासस वर्ड ऑफ कलेक्ट फॉर द न्यू हंडन ब्री खाने के बारे में दोस्तों सूरीनाम देश के भैया चार मिला पकड़ाने यहाँ इसके फल पे पैसा वेतवास करता भैया हाँ और नमुआ हम सुनली बाटी कौन कौन है ओ माँ बाकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बतावे ना अति स्त्रीमेंस अति खहेम जे तो के पकड़ी से वेतवा सके चीज और वो बतावे है कि इतना सना चार दुगो औरत दुगो मरत हैगा सूरीनाम के यहाँ के पोल पे कल के बहुत ढेर पैसा पाई सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सूरीनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहाँ बंद कर इसे का फोटो वेतवा से पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बता पे उन डांस हम नमून सुन चुकली के है मदखा एक निश्चय को हम दत नहीं बकेंट इस एक वेल सेल्फ नहीं इन प्रॉब्लम में को मोमेंट्स तो ऐसे बात है और जो क्विकवारा भैया फेव फोन द सीफन डर तक किलो क्विकवा चोरी भैले कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भैले अरे भैया तू एन तक तक किलो हाँ तू एन तक तक किलो उजर का मिलले सी गौरी चरण गजरी हाँ आपको स्वागत करते हैं तो त्वेयन तक तक किलो भैया सेफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर भैया तरीकी कर भैया दबाए धरे रहा कोका इन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सूरीनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंडर सुक करता होम पर स्ट्रात में बेड अंडर सुक इन दैट फुरते एक वर्दन मर्दर ब्लॉक को कहीं ना और देखो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते को एटलेक एट कम और मर्दर 80 किलो हेड अंडर सुक ना द हेयर कोन फ्रॉम द ड्रग्स द वापस इन बट अप्स बटिया ई है भैया क्विक चोरी हुई गे इको कहीनवा का होई हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज हाउ द वार हेट मेन से द फॉरट्राउट है द ऑफ द पॉलिसी फॉर सूरीनाम दी राख टेलकंस वेग भैया दी राख टेलकंस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi jab aila bhaiya net buiten la to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek kon te kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले नो तेस में तो जोगी बोले नो तेस में बोले स्कूतून तो कहते तेस करे पुलिस ब्रो में से कलाइस में से पैसा चल जाए ઈ ચલ જાય ઉ ચલ જાય 300 સોફિલ અને અને અને કિલો क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए हैं। तो बोले कैसे एकर बारे में है, तो ये बात त्वेयन तक तक किलो को इन भैया पकड़ान है, हमारे जनता ऐसे बतिया है। तो और आगे हम आपको सुनाई है, वे बोले रही सिपाही भी मांगे अपन नाकदीन के पैसा, और सिपाही मांगे नाकदीन के पैसा, ओहू सब मांगे हैगा ऑफ हेल्दरिंग एकर बारे में, हमारे जनता हमारे दोस्तों। तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे, तो शारदा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में, आपको हम स्वागत करते हैं।
1: जब श्री राम देश आए थे हम

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रुकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपने ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

भाग लिए हैं, आप सबको हम बधाई देते हैं। हमारा एमिक्रासी के फेफ यूनिक जो हुआ है, और सीता गौरी चरण है, शारदा है, चित्रा है, मुन नारायण है, राज राम लगन है, तोनी इसरी है, सुंदर हीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है। आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरिए। राम तो फॉल खेर।

और अपना देश छोड़ के बचवा गईले सुरीनाम में आई हिंदुस्तान से इमिग्रेंसी जो फेफ यूनिक होता है, उसलिए इस गीत को हम चलाते आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद और हरीश बालक की ओर है।

और अपना धर्म कहाँ ही छोड़ेंगे। शिवालक जी संदेश देकर पठाए हैं कि अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हिंदुस्तान से एमी खनासी के एक और गीत सुना जाए, वो है लैला लाला राम हरिद्वार सिंह दीप महावीर एमी खनासी देश भक्ति भक्ति का सॉन्ग।

और हिंदुस्तान से इमिग्रेशन का ये गीत हमने सुना दिया। और जब ये सब गीत चलाते हैं तो कैसे अपना उस्ताद कुस्ताद स्वर्ग मोहम्मद शरीफ को हम पीछे छोड़े।

0: और सुन ले मोर कहानियां के बाद में एक और हो जाए।
1: अब आप लोगन सुन बाबा के कहानी।

और दोस्तों हिंदुस्तान से इमिग्रेशन के गीत आज हम आप लोग को सुनाते हैं, एक और हो जाए।

और दोस्तों, हिंदुस्तान से इमिग्रांसी के उपलक्ष्य पर इंदिरा जगरू भी आप लोगों को सुनाए चला जाए। आज हम सब रवि उदित राम क्या सुनाते हैं।

ऑलस ऑल इन वन, आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है, तो कभी काशी को हो जाता है, तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है, तो कभी मॉरिशियस का हो जाता है, तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं, और कभी तो हो जाते गयाना का, त्रिनिदाद का, तो कभी सोका हो जाता है, तो कभी चटनी हो जाता है, और कभी बैठक गाना हो जाता, और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं। तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे, और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है एमी खरासी के, या एमी खरासी नहीं, जितने लोग आए हैं और ये गीत को आपको हम सुनाते, आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में है चाहे जोन ऐसन देश में है, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों। ओन दफ दैट यू खास है, एक बन खबर इन नीदरलैंड, यू खास है सेगे या एक बन फन हियर, एक बन फन दार, मार ओरस्प्रोंकलिक हील फिर मेंस सेगे ये बन फन इंडिया, नी या नो मे फॉर ऑदर्स वेल, एंड दार मग यू सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन मेंस, सो गात इट टोख, यू मग इट सीकर ट्रस्ट ऑफ सेन टो सुरिनामी। जों आज हम आप लोग को सुनाएंगे, और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों, आओ एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये जोंग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार या सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं, और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मीन्स, en laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice of een virus Uditram, Nisha Madaren, Auro Ahmadali, Surinder Sutal, Faris Barsati en Yadgar Orchestra gestaan. Je giet ko je sab gaiet he met alles drop en dran. Chutney masala laga ka raus suna jai.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिश राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिश राम खिलावन इज ऑन्स टॉपर, एन फॉन द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिश राम खिलावन।

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jun dis me amki janam hua hai. और ये क्रिस राम खेलावन गाकर सुना है दोस्तों। और हम सब तो यहाँ हॉलैंड में आ गए हैं, लेकिन आप जहाँ भी रहो, जहाँ बसो, वहीं सुंदर देशो, ये भी आप लोग को जानते हैं। एंड ऑल्सो क्रिस राम खेलावन है हॉट मैन से डाउन के नोवर नोइड ओंस बेस्ट, एन फन ओंस बेस्ट सांगर फरगेट। वी कान दैट सेन, वी कान दैट सेन मैन से, लात वे फकान लाइस्टर। Yeah.

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. Wij hebben ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamar sarnami ke bhasa wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ऑनसे रबिन बलदेव सिंह. रबीन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबीन बलदेव सिंह जो डन हाक का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सरनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दनहाख के रवीन बलदेव जी हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोसलीत या दट मुत ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरनाम से फॉलोसलीत इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरनाम से फॉलोसलीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और वैसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितने लोग के आपको फीलिंग है, तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह। कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं, वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yaniki Guru Dutt Kala Singh bhi ek Surinam ka aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जी का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम की, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौवन क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदस दन उनसे एक सूरीनामी हमारा दे सत्यनारा सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनारायण रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरनाम।

0: रे मियो तो वे साय तू ए, क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ।

दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिने तमन इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों, और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, आउट इन गोल का प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जनम ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा से सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहून के माध्यम से और यहाँ से सुनाते हैं।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की जोर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का क्लियर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेस का ये सॉन्ग है।

दोस्तों दिल के भंवरे करे पुकार अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कही पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, एक गीत है दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी मौफी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों, toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien, maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए। ये कालम नहीं है।

पे हम उड़ जाएंगे। मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बालीवाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहू राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव 125 का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इसकी ताव सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सड़क के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

0: KPN heeft weer een...
1: और छोड़ दो ये आंचल जवाना क्या करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी। और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 20 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

मोरे अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नेखतींद्रियन तख्तका। ये फिल्म है दोस्तों और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है की जोड़ दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सुरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

और राजेश खन्ना थीना मुनीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है? नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, वो लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

ओहो आशा जी, रोमांटिक सॉन्ग। वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे, वो फिक्र नाम है वक्त, नई खती 965 का।

हम जब सिमट के आँख और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर्रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्ते दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: हेमंददा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

और किसी कविता होगा तो कविता जी आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

0: और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो।
1: दोस्तों मुकेश माइंटी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माइंटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैल।

उम्र लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

ये सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग। गीत का बोल है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे है आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए, ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं, आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: Stani Radio.
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.
2: एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। लता जी आपको सुनाने वाले हैं अखियों को रहने दे।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बॉबी से हमने पेश किए हैं अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। आरजू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते तलत महमूद जी की आवाज में ए दिल मुझे ऐसी जगह ले जाओ।

फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं, तलत महमूद जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे रहे ना रहे हम।

0: Wist je dat banken jou...
1: अभी आप सुन रहे थे रहे ना रहे हम महका करेंगे। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ममता से हमने पेश किए हैं ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: Campina Quark is er nu ook voor.
1: अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, ये सुंदर सा सॉन्ग आपको सुना रहे थे महेंद्र कपूर जी। फ्रॉम द मूवी अनमोल मोती से हमने पेश किए हैं फूल आहिस्ता फेंको, प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: आपका ये बजा

प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, और अभी आप सुन रहे थे फूल आहिस्ता फेंको। लता जी आपको सुना रहे थे मुकेश जी के साथ में अनुरोध। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोरदा, आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे।

किशोर डा अभी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी अनुरोध से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, झूमता मौसम मस्त महीना, मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से।